0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays.
9: Foot tapping music.
10: फजा 97.1 FM। यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: It's
11: music never sounded better.
5: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक.
5: फजान 97.1 एफएम.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 एफएम एंड डेप.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97।
2: You are listening 97.1 FM.

कोई से तुम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सा...

0: This is a public service announcement.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.
12: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
13: You are playing. We are playing Fuzza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: It's
7: music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: हजार 97.1 FM।
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
16: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शाम

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu, gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नॉटिंघम में आ गया ना यार। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक
8: 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: Paris. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
9: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
10: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

radio station for people who love music.

वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सामिन जीवकारी लिसनर्स ऑफ फजान 97.1 FM, हियर इज योर होस्ट नासरान प्रेजेंटिंग अ लाइव इन डेफिनेटली लाइव शो, नेमली गुड मॉर्निंग जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंगम, नॉटिंगम।

जी, आज की वेदर रिपोर्ट पहले भी डिस्कस हो चुकी, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस किए देते हैं कि जनाब आज नॉटिंघमशायर का टेम्परेचर मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड गया। हल्की फुल्की सी क्लाउडी विंड आपके साथ है, हल्की फुल्की सी बादल आपके साथ हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि मौसम कदरे बेहतर इस वजह से है कि हीट तो वैसे ही है मौसम में, लेकिन हल्के फुल्के से बादल रहेंगे क्योंकि इस वक्त फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल है जी 28% और ये शाम तक जनाब आपके पास ऑलमोस्ट 8 बजे तक ज़्यादा जो हीट है वो थोड़ी सी आपको महसूस होगी। और आज रात के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो एनवायरनमेंट चेंज है, ड्राई नाइट टुनाइट विल पैची क्लाउड एंड क्लियर स्पेल्स डेफिनेटली अवेलेबल है, बिल्कुल खुश्क नाइट है, कोई भी किसी जगह पर भी बारिश के कोई इम्कान नहीं है। लेकिन हमारे नॉटिंघम शहर के बाहर के ऐसे लोग जो लिस्टर से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं या इस साइड से अगर आप थोड़ा सा वेस्ट मिडलैंड की तरफ निकले या बाहर चले जाएं, तो जहां पे लोग मौजूद हैं इस वक्त वो हमें बताएंगे कि वहां के वेदर की सूरत हाल कैसी है। वैसे तो मैं बता सकता हूं अपनी वेदर फोरकास्ट की जानिब से, लेकिन बेहतर यह है कि आप लोग मुझे मैसेज करें। कैसे मैसेज करेंगे? 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पर हम उससे रबते में रहते हैं, और रबते में रहने के साथ साथ आप इस चीज का अंदाजा भी लगा लेते हैं। ये भी बता देते हैं कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और आपकी जो गुड वाली मॉर्निंग है वो गुड कैसे होती है, वो स्वस्थ कैसे होती है। मेरे तो विचार ऐसे हैं कि मेरी सोच ऐसी है कि जब आप लोग मुझे ट्यून करते हैं या फिर मुझे मैसेज करते हैं, फिर आप लोग मेरे साथ हो जाते हैं और गुड मॉर्निंग नॉटिंघम मज़ीद खूबसूरत होती है।

लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कोट ऑफ द डे मैं अनाउंस करता हूँ, पहले ही अनाउंस हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आपकी समातों की नजर किए देता हूँ। कहते हैं कि जनाब कोशिश स्ट्रगल है ना जी, आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, यानी कामयाबी मिले या तजुर्बा, दोनों चीज़ें ही नायाब हैं जी। बिल्कुल, इस पर भी अपनी विशेष टिप्पणी मुझे दीजिएगा, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी राय मुझे मेरे साथ कायम कीजिएगा, या बताइएगा कि आपकी सोच, आपके विचार की धारा किस सिमट में बहती है। मैं भी अपने विचार की धारा को सिमट में ले चलूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सारी बातें जो कभी कभी इंसान के पर्सनल लाइफ में बड़ी करखतगी के साथ सामने आती हैं। और कभी कभी इंसान सोचता है कि अगर इन तमाम चीज़ों को मैं बरूएकार लाते हुए ये कर लेता तो बेहतर था, अगर इन तमाम जो मेरी एबिलिटीज थी इनको बरूएकार लाते हुए ये कर लेता तो बेहतर था। तो जब ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इंसान को मिलती जाती हैं तो फिर इंसान थोड़ी सी काविशें करता है, स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है। और वही कोशिश होती है जो इंसान को कुछ मौका देती है, वही कोशिश होती है जो इंसान को कुछ अचीवमेंट करने का एक ऐसा साइन देती है, एक ऐसा नज़रिया देती है, जो नज़रिया हमेशा उसके लिए बड़ा फ्रूटफुल, बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। और फ़ायदेमंद नज़रिया कौन सा बेसिकली होता है, इसके हवाले से सामीन में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि फ़ायदेमंद नज़रिया एक ऐसी थ्योरी है जो थ्योरी जनाब जिस किसी सियाने बंदे ने ईजाद की है, वो सियाना बंदा आपके सामने मौजूद है।

0: फ़ायदेमंद नज़रिया क्या होता है ना, फ़ायदेमंद नज़रिया ये होता है कि नज़रिया कोई भी हो, कीदा कोई भी हो, वो आपका पथेटिक होता है, यानी आप उस पर मुख्तस होते हैं बचपन से ले कि आपने अपने अबाओ अजदाद को हर चीज़ में देखा है। लेकिन वो लोग जो उस नज़रिए में से कोई ना कोई फ़ायदा निकाल ले, वो फ़ायदेमंद नज़रिया कहलाता है। फ़ायदा कैसे निकालेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बता देता हूँ कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम यही सुनते रहते हैं कि जनाब हमने बड़ों की इज्जत करनी है। तो अब जनाब इसमें से अगर आप नज़रिया निकालना चाहें फ़ायदे का, ये एक हमारा एक नज़रिया है, हमारी कल्चर है, हमारी एक ऐसी हेरिटेज है जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है हमारे वालदैन की जानब से, अबाउजदाद की जानब से, हमारे ग्रैंड पा, उससे पहले जितने भी थे लोग, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, जो अगली जनरेशन है वो मेहनत करती रहेगी, और यंग जनरेशन मेहनत करने में ज़्यादा असफल, ज़्यादा कामयाब इसलिए होती है क्योंकि उनको एक बैकग्राउंड मिलता है, उनको एक छोटा सा ना वे मिल जाता है कि भाई हमने इस रास्ते पे निकलना है, इस रास्ते पे मेहनत करनी है। तो फिर इंसान करता क्या, इंसान सोचता यह है कि अगर हमारे अबाओ अजदाद ने बड़ों की इज्जत करके इतनी बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है, तो अब मैं बड़ों की रिस्पेक्ट मजीद करके, ठीक है, उनसे बेनिफिट्स लेके मैं इस रिस्पेक्ट को मज़ीद बढ़ाता हूँ, मैं इस बिज़नेस को, इस कारोबार को, इस एम्पायर को मज़ीद बढ़ाता हूँ। फिर क्या होता है कि वो जो फ़ायदेमंद जो नज़रिया होता है उसको आप कहते हैं कि आप किसी बड़े से उसकी आइडियाज़ के साथ साथ फाइनेंशियल तौर पे भी उससे हेल्प ले लें। जी आप कह सकते हैं अपने किसी बड़े को, जी मुझे देना 10,000 pounds, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो डेफिनेटली अगर वो आपकी कामयाबी सलाहियतों से, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनसे वो तमाम लेवल पे एग्री करते होंगे, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी वही होगा जो आपका है, तो डेफिनेटली वो आपको देंगे, और फिर आप इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करके फिर उनको दिखाएं कि यू गॉट सक्सेस, आपने कामयाबी हासिल की, आपने उस 10,000 pounds को मल्टीप्लाई करके 100 pounds तक कैसे लेके गए, 100 pounds तक कैसे लेके गए, 100,000 pounds तक कैसे लेके गए, 1.5-2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 500,000 pounds तक किस तरह कमाया, इसने 22 सकने हो, तुम्हें 10 ही सकने हो, लेकिन तुम कुछ रहे दसो ता जो तुम आपको मेहनत कर सो, ये ना हो कि कल टीया लाओ कल तुसा कुरे जाके टीया लाओ बाहर काउंसिल आले उन चिकला के पटा के परा मारन क्या कर सो फिर। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एनीवे गप शप तो हमारे साथ साथ चलते रहेगी, तन तो मज़ा भी साथ साथ रहेगा, आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे। आपको बताते चले कि जनाब जो लोग इस वक्त मुझे 97.1 FM पे ट्यून कर चुके हैं, आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमें ऐप पे ट्यून करना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं, उनको बता दें कि ऐप पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। हमें ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल, एक खूबसूरत सा पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ फजा लिखा आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, और जब आप उसको पे करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी समाध होगी नजर, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए। तो जनाब स्टे ट्यून एंड स्टे अचीव्ड विद फजा 97.1 FM। कमर्शियल ब्रेक भी हमारे दरमियान हाइल होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों के मैसेजेस भी हम पढ़ेंगे। आपको पता है आप इस पे व्हाट्सएप पे हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, 0115-710-971 ये वो नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जनाब, काफ़ी सारे स्टॉल होल्डर्स हमसे पूछ रहे हैं कि जनाब आज़ादी काइट फेस्टिवल का क्या करेंगे। तो आज़ादी काइट फेस्टिवल इस साल वी आर नॉट गोइंग टू अनाउंस, इस साल नहीं, कुछ नेक्स्ट ईयर पढ़ा करेंगे, तो फिर आज़ादी काइट फेस्टिवल भी आपके पास आएगा। लेकिन इसके अलावा 14 अगस्त जनाब इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान मनाया जा रहा है एक्सेलसियर नवाब में, इसके बारे में बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टे ट्यून,
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉल स्ट्रीट नॉटिंघम ND7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 0780298-88615। Only a limited number of slots available.
3: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
4: What happened? You look very happy.
5: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
4: Congratulations. That was very quick.
5: I was very lucky. I used the local visa experts.
4: Who helped you with the application?
5: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
4: Where is AMH solicitors based?
5: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
4: Brilliant. I will contact them to help my family visa.
5: Sure, their number is 0115 671 3677, and they are in Pure Gym building, so parking is available, and they also offer free initial consultation.
6: AMH solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था कह रही हूँ उसे खुश आमदेद कहते हुए। एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया कि जनाब सबक सबक आपको बहुत अच्छा याद है। वाओ वाओ वाओ यार, क्या कमाल के लिसनर्स है हमारे। बिल्कुल जनाब, जबरदस्त हो जाता है सबक याद हो जाता है। सब कहते हैं ना उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया डेली बेसिस का जो काम हो, तो ये जुबान पे रटा रटा आ जाता है। एनीवे, अगर इस सबक में आप हमारी दिल की फीलिंग्स भी, हमारी गहराई, हमारे जज्बात भी देखें तो फिर आपको पता चलेगा, जज्बात की गहराई भी देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको जो वेलकम करते हैं ब्रेक के बाद वो बड़े दिल के साथ करते हैं, दिल की गहराइयों से खुश आमदेद वाकई ही आपको कहते हैं। एनीवे, स्टूडियो 97.1 एफएम जनाब, सेगमेंट है हमारा पर्सनैलिटी ऑफ द डे। और आज की पर्सनैलिटी कौन सी है, या आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं?

वाव वाव वाव, वेलकम बैक। तो जनाब, मैं सादा जुबान में आपको ये समझाता चलूं कि वेलकम बैक उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे ट्यून किया 97.1 FM पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। आपको ये बताता चलूं कि जनाब, बिल गेट्स अब ये कहते हैं कि प्लान योर डे, वेक अप ऑन द सेम टाइम। हर रोज आपने एक ही वक्त में जागना है, ठीक है, उसको लेट नहीं करना। जैसे कि मुझे ले लें कि मैं कितना अर्ली जाग के आपके लिए गुड मॉर्निंग करता हूँ। हंसना मुझे इसलिए आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग इस वक्त में ऐसा जो मेरी मैनेजमेंट के मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तंजोमजा तो साथ साथ चलता रहेगा। प्लान करेंगे आप अपने डे को आप प्लान कैसे करेंगे? प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जनाब, बिल गेट्स की मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी में हमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त और कॉमन सी मिलती है, वो ये है कि हम अपने आप को जब थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम ज़्यादा टाइम अपने स्क्रॉलिंग में लगाते हैं, टिकटॉक पे ज़्यादा लगा देते हैं, चैट पे। आजकल जनाब स्नैप का टाइम चल रहा है और स्नैप पे हम इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, हमें ये भी एहसास नहीं आता कि हुज़ अलोंग विद अस, कि हमारे साथ कौन कौन है, कौन कौन जुड़ा हुआ है और किस किस ने हमारे साथ क्या क्या तवक्कुआत लगा के रखी है। टाइम बहुत शॉर्ट है, दुनिया बहुत तेज आगे जा रही है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इन तमाम चीज़ों को जब एक चीज़ में आप एक ही सिमत में बुरेकार लाते हुए अपने आप की मेहनत, अपने आप की काविश देखते हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो आपको एहसास होता है, आपको अंदाज़ा होता है कि आपके पास क्या चीज़ है खोने के लिए और किस चीज़ को आपने पाना है। बिल्कुल जनाब, बिल गेट्स साहब ने ही कुछ ऐसे ही कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अपने जो ड्रीम है खुद बिल्ड करें, ठीक है, अपने जो ख्वाब हैं उनकी ताबीर आप खुद करें, नहीं तो कोई आपको हायर कर लेगा उनकी ताबीर पूरा करने के लिए। बिल्कुल जनाब, आजकल ऐसा ही होता है। तो जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैंने आपके सामने रखी। मोटिवेशन बेसिकली कहाँ से लेनी चाहिए? वहाँ से लेनी चाहिए जहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र आए। जहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र ना आए और सिर्फ हवा में बातें हों, तो फिर आप समझ जाएं इस चीज़ को कि आपके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जिनके आप सही हकदार हैं। और इंसान फिर थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एंगल्स में मूव करने की कोशिश करता है। और जब ये तमाम चीज़ें इंसान के पास रह जाती हैं, तो फिर इंसान को एहसास होता है कि यार, वक्त का वो पहिया तो बड़ी तेज़ी से चल गया, हर चीज़ गुजर गई और मैं कुछ कर ना सका। इसलिए मैं अक्सर आपको यही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने अपने आप को मैनेज करना है, तो सबसे पहले बिल गेट्स साहब की तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, और उसके बाद देखें आप किस लेवल पे जाते हैं, कितने खूबसूरत से लोग आपके पास रहते हैं। तो जनाब, ये बातें भी हम साथ साथ चलाएंगे और आपको पता है ना कि इस टाइम थोड़े से ट्रैक्स भी आपको सुनाने हैं। तेरे इश्क दा जाम हसीन है जनाब।

लेंजी सुबह हसीने शाम हसीने, इतना खूबसूरत से ट्रैक्स भी आप लोगों के साथ है। डेफिनेटली आपके जो प्यार का जाम है वो ज्यादा हसीन है। मैंने कहा थोड़ी सी विशेष टिप्पणी, थोड़ी सी अपनी राय भी बीच में शामिल करता चलूं। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के खूबसूरत सफर में आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा, ट्रैक भी आप लोग साथ साथ एंजॉय करेंगे। मैं आपको मुखल इसलिए हो रहा हूँ बीच में ताकि अंदाज़ा रहे कि हमारे पास टाइम का जो समय का जो एक कवरेज है ना, जो एरिया है और जो वो जंजीर है, वो थोड़ी सी करस्तगी में हमारे साथ हमारे गले को घोंट रही है। बिल्कुल जनाब, फंदा है फांसी का नहीं, फंदा है वक्त का।

वाओ, दिस इज माई फेवरेट रन, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, इंजॉय कीजिए खूबसूरत ट्रैक। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि वक्त हुआ चाहता है समाप्त, कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको खूबसूरत सा एक दिन दीजिए, आज के दिन उनको मोटिवेट रखिए, और स्पेशली आज के दिन अपने जो ख्वाब हैं उनको खुद बिल्ड करना सीखें। किसी और को अलाउ मत कीजिए कि वो आपके ख्वाबों को बिल्ड करे, या फिर आप किसी के पास नौकरी करें उसके ख्वाबों को बिल्ड करने के लिए। तो ये थी जनाब आज की मोटिवेशन, ये था जनाब आज का रिश्ते, और ये था आज का दिन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM, इंजॉय कीजिए अपने प्यारों के साथ, लेकिन अपने मेजबान में नासर खान को दीजिए आज के दिन के लिए इजाजत। कल नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक और नई गपशप और नए ट्रैक्स के साथ रहेगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, नॉटिंघम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

You are listening 97.1 FM.

और हर तरह की गॉसिप्स होगी सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब के लाइव स्टूडियो टीवर डायलॉग से। सो वेल लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से नए दिन का आगाज नहीं किया या फिर आप अभी भी हैं थोड़ी सी सुस्ती में मुब्तिला, सो सुस्ती को कर दीजिए हैराबाद और स्टार्ट करिए ये खूबसूरत सा मीनिंगफुल सा दिन। देखें आज का दिन कितना खूबसूरत है और ये आपको बुला रहा है अपनी जानिब कि इसको स्टार्ट करो और आज के दिन के हवाले से अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ। सो लिसनर्स, बिस्तर का पीछा छोड़ दीजिए और स्टार्ट करें ये खूबसूरत सा दिन किसके संग? हमारे संग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब पे। सी तो लिसनर्स, जैसा कि आज है थर्सडे, यानी कि आज का दिन तकरीबन हमें इस चीज की आगाही दे रहा है कि अब हमारा ये जो वीक जिसको हमने स्टार्ट किया था वो बहुत करीब आ चुका है अपने एंड के। सो थर्सडे को पहुंचकर बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके खुश हो जाते हैं कि फाइनली द वीक हैज़ गॉन और अब आने वाला है वीकेंड। और वीकेंड के लिए तो आप सभी को मालूम है कि संडे होता है और संडे को हम सभी कितना ज़्यादा खुश होते हैं, फाइनली एक ब्रेक मिलता है एक लॉन्ग वीकेंड वीक के बाद।

मुझे लिसनर्स शो का बाकायदा आगाज करेंगे, होंगे बहुत सारी चटपटी सी बातें, गपशप और साथ ही साथ होगा म्यूजिक का तड़का। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताती चलती हूँ कि किस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं। आप हमें ट्यून कर सकते हैं radiofaza.com.uk जो कि है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो आप इस वेबसाइट के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे संग जुड़ सकते हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि आपका फेवरेट आरजे कौन से दिन किस शो में आने वाला है। सो लिसनर्स, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से लॉग इन करें इस वेबसाइट को। और इसी के साथ ही अभी शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए आप हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब के संग रहिए टीवा डायलॉग में। We will be right back after a very short break.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: Get ready to move.
12: It's all about the beat. Wow, FM.
13: Only Tune Super Hit Channel.
14: Says on 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। तो लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन हमारे सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो लिसनर्स, बताइएगा आप हमें कि आपने हमें इस वक्त कहां से ज्वाइन किया है और आप दुनिया के किस कोने से हमें सुन रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप हमें क्या काम करते करते सुन रहे हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे बताएं। सो किस तरह से आप मुझे बताएंगे उसका भी तरीका सिंपल सा है, मैं आपको बता देती हूँ। सो 01157100971। जी हाँ, ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि ये है हमारा रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैब के स्टूडियो का नंबर। सो आप इस नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं बल्कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस वक्त मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और क्या करते करते सुन रहे हैं, और अगर आप किसी भी कशमकश का शिकार हैं या फिर ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है कि जो आपको कर रहा है बॉदर, सो डोंट वरी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक बहुत ही अच्छा पीस ऑफ एडवाइस दूं। इसके साथ साथ आप हमें इस नंबर के थ्रू ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, आप क्या चाहते हैं कि शो में शामिल किया जाए, और साथ ही साथ आप अपना पसंदीदा म्यूजिक भी हमसे शेयर कर सकते हैं। सो जी वेल, पूरी कोशिश की जाएगी कि शो में वही सब गाने शामिल किए जाएं जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद हैं, क्योंकि डीवा डायलॉग का फर्स्ट मोटिव यही होता है कि हम करें अपने सभी चाहने वालों को खुश। वेल लिसनर्स, आप अपने किसी भी चाहने वाले को कोई भी अच्छा सा प्यारा सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको इतना होगा कि आपको 01157100971 इस नंबर पे जाके अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप चाहते हैं हमसे शेयर करना लिख के भेज दीजिए। पूरी कोशिश की जाएगी कि उन सभी चीज़ों को शो में लाजमी शामिल किया जाए। साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि रेडियो फजा 97.1 FM है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजा 97.1 FM, एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ अपडेटेड रहें, हमारी और आपकी हो कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ आपको मालूम हो कि रेडियो फजा 97.1 FM पे अब कौन से न्यू इवेंट्स आने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आपका फेवरेट आरजे कौन से दिन के शो में आने वाला है। सो हर तरह की मालूम आपको कहाँ से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन से। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे। वेल, हर एक नए दिन की तरह आज के दिन का भी मोस्टली लिसनर्स का मोटिव यही होगा कि ओ अब फाइनली ये दिन स्टार्ट हो चुका है, तो किस तरह से इस दिन को यूटिलाइज किया जाए, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाएँ जिनसे हमारा ये दिन बन जाए मीनिंगफुल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी की कोशिश ये होती है कि हम अपने आने वाले हर दिन को अच्छा बनाएं, उसके बाद प्रोडक्टिविटी हो कुछ ना कुछ, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, और जो टाइम एक बार वेस्ट हो जाता है वो टाइम कभी भी वापस नहीं आता। सो आप भी कोशिश किया करें कि आने वाले हर एक नए दिन में कोई न्यू स्ट्रेटजी अप्लाई करें, कुछ नया करें, कुछ मुनफरिद करें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं। शो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आज शो में एक ऐसा टॉपिक शामिल करेंगे जो कि मेरे आपके बल्कि हम सभी के दिलों के बहुत ही ज्यादा है करीब, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सब के पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। सो ये टॉपिक हमें हमारे एक लिसनर ने रिकमेंड किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं
वाई नॉट, हम ज़रूर इस पर डिस्कशन करेंगे। सो करेंगे डिस्कशन उसके ऊपर भी, लेकिन अभी सुनते हैं एक अच्छा सा ट्रैक ताकि हमें थोड़ी सी एनर्जेटिक वाइब्स मिलें और साथ ही साथ हमारी एनर्जी का लेवल थोड़ा सा अप हो जाए। सो सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक के उस पर होती है आप सभी से मुलाकात एंड देन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

तो लिसनर्स, एक बार फिर से सॉन्ग से वापसी पे वेलकम करती हूँ आप सभी को। कैसा लगा ये खूबसूरत सा ट्रैक? पर्सनली आप सभी सोच रहे होंगे कि आजकल साइनअप को क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा वीकेंड के गाने प्ले किए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताती चलती हूँ, इसका कोई ख़ास कारण नहीं है, बट ये कि आजकल मुझे ये गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं। सो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं, जो गाना मुझे अच्छा लग रहा है हो सकता है कि मेरे लिसनर्स को भी उतना ही अच्छा लगे। सो इस तरह से मैं ये सोचकर वीकेंड के गाने आजकल प्ले कर रही हूँ। वेल लिसनर्स, अगर आपको लगता है कि मेरे प्ले किए हुए गाने इंटरेस्टिंग नहीं हैं या फिर हैं बोरिंग, सो आप मुझे बता सकते हैं। आपके भी पसंदीदा गानों को मैं ज़रूर शो में शामिल करूँगी। तो ज़रा बात कर लेते हैं अब उन सभी लिसनर्स की जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर ड्राइव करते करते हमें सुन रहे हैं। सो आप सभी से इतना कहूँगी, अगर तो आप हैं सफ़र में या फिर आप पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हों, बी केयरफुल एंड बी सेफ। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है और ज़िंदगी एक ही मरतबा मिलती है, सो बिल्कुल भी इसे जल्दबाजी या फिर लाउबाली में मत ज़ाया करें, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं और आपका एक कदम जो कि आपका एक गलत कदम समझा जाता है वो किसी दूसरे की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा मुतासर कर सकता है। सो बी केयरफुल और ड्राइव करते करते अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड बन जाए और भी ज़्यादा अच्छा और आपको थोड़ी फ्रेश एनर्जी सुनने को मिले, तो उसके लिए आप हमें यानी कि रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM को ट्यून कर सकते हैं। सो ज़रा बताती चलती हूँ कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आप किस तरह से हमें ट्यून कर सकते हैं। तो आप हमें फ़ज़ा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। वेल लिसनर्स, आज कितना ही खूबसूरत मौसम है और आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो आते हुए रास्ते में एक ही चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि आज मौसम कितने बेहतर है। और जब हल्का सा भी मौसम बेहतर होता है, जब आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे गर्मी वाली फीलिंग्स आ रही हो एंड सडनली मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेजिंग लगता है। वो किसी ने कहा था ना कि इंसान की जो बाहर का मौसम होता है वो भी इंसान के अंदर के मौसम को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है। सो अगर आपके अंदर का मौसम हो चुका है थोड़ा सा वीरान, तो आज ज़रा घर से बाहर निकलिए और देखें बाहर का मौसम। हो सकता है कि ये बाहर का मौसम आपके दिल के मौसम को भी कर दे खूबसूरत और अच्छा। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी है कि दे हेट द रेन, बट आई फील लाइक कि हाउ कैन समवन हेट द रेन। रेन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और मुझे सबसे ज़्यादा बारिश में जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये कि जब भी कभी बारिश होती है तो वो जब बारिश ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको एक मिट्टी की खुशबू आती है, वो एक फ्रेग्रेंस, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बचपन ही से मुझे बारिश बहुत पसंद है। अभी तो खैर मैं बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कभी कभी दिल करता है कि जब बारिश हो तो आप उसको खुल कर इंजॉय करो। अच्छा, हम सभी क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम सब बड़े होते चले जाते हैं तो वैसे वैसे हम अपने अंदर के उस बच्चे को तकरीबन मारते चले जाते हैं और हम इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा अगर आज मैं बारिश में खुलकर भीगूंगी तो लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और मैं इस चीज़ को वैल्यू करती हूँ कि लोगों का परसेप्शन क्या होगा। सो इस तरह से हम वो तमाम तरह चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं जो कि हमें हमारे चाइल्डहुड में इंजॉय करवाती थी। सो मेरा मानना यह है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं या फिर अगर आप ओल्ड भी हो चुके हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आती हैं, तो उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। वेल लिसनर्स, इस हवाले से आपका क्या कहना है, आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी कीमती आरा 01157100971 इस नंबर के थ्रू। और साथ ही साथ जैसे ही मैंने ये आपको बताया है, हमें आई है एक अत्यंत अच्छी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन। सो हमारी ये लिसनर हैं जो कि हैं के पॉप फैन और वो चाहती हैं कि हम शो में शामिल करें BTS का कोई भी अच्छा सा गाना। सो क्यों नहीं, ज़रूर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बताए हुए सॉन्ग्स को शो में लाजमी शामिल करें। सो शामिल करते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक
इस उम्मीद के साथ कि बाकी सभी लिसनर्स को भी अच्छा लगेगा। ट्राई की उस पर होती है आपसे मुलाकात, एंड देन स्टे ट्यून विद अस।

लिसनर्स, ये खूबसूरत सा ट्रैक हमें हमारे एक रिकमेंडेशन के तौर पर आया था हमारी एक लिसनर हैं जो कि हैं के पॉप आइडल फैन। सो उनका कहना था कि इस गाने को शो में शामिल किया जाए। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा देखी है कि जितने भी के पॉप फैंस होते हैं वो सब अपने के पॉप आइडल को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एंड मैंने ये भी देखा है कि जब भी कभी कोई भी फ़ैन मीटअप होता है या फिर ऐसे कोई से भी इवेंट्स होते हैं तो जो यूथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ मैंने एशियन कंट्रीज़ में बहुत कम देखी है, लेकिन साउथ कोरिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, उनके जो के पॉप आइडल्स होते हैं, जैसे कि BTS की अगर हम बात करते हैं तो वी, जंगकुक एंड जीमिन, सो जिस तरह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरह से इनके फैंस इनको वैल्यू करते हैं, इनको भरपूर प्यार दिखाते हैं, तो ठीक उसी तरह से इनके के पॉप आइडल्स भी अपने सभी फैंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि मैंने देखी थी BTS के अंदर, सो एक बार क्या हुआ कि एक फ़ैन मीटअप था और मैं जस्ट रैंडमली स्क्रॉल कर रही थी। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो हम स्क्रॉल करते करते डिफरेंट तरह की वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं। सो मैंने एक रील देखी जिस पे दिखाया जा रहा था कि लाइक एक फ़ैन मीटअप है। सो उसमें ये दिखाया गया कि लाइक जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के फैंस होते हैं, तो BTS के एक मेम्बर हैं वी, उनसे एक फ़ैन मिली जो कि थी मुस्लिम। सो उन्होंने उनके रिलीजन का रिस्पेक्ट किया और उनसे बहुत ही अच्छे से और वार्मली मिले। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा दिल किया

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से टीवडे लोक में आप सभी का खुश आमदीद। मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग, कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। चलो लिसनर, जैसा कि आगे मैं आप सभी से बात कर रही थी और बीच में एक अदद कमर्शियल ब्रेक हाइल हो गई थी जिसका मुझे पता ही नहीं चला, और जब अचानक से मेरी नज़र पड़ी एंड देन आई रियलाइज कि ओह, ब्रेक तो स्टार्ट हो चुकी है। सो हमारी वो बात, हमारी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको कंप्लीट कर दिया जाए। सो मैं ये कह रही थी कि जितने भी के पॉप आइडल्स हैं वो अपने फैंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत वैल्यू करते हैं, साथ ही साथ वो इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका ताल्लुक किस रिलीजन से है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट BTS एंड अबाउट के पॉप। सो डैट्स द वन रीज़न जिसकी वजह से मुझे BTS अच्छी लगती है और मैं पर्सनली उनको अच्छा समझती हूँ। सो वेल लिसनर्स, आप सभी को कैसी लगती है BTS, प्लस आपको के पॉप आइडल्स कैसे लगते हैं? सो बता सकते हैं आप हमें 0115710971। तो लिसनर्स, अभी हमें एक रिकमेंडेशन आई है, हमारे एक लिसनर हैं जो कि कह रही हैं कि कुछ हिंदी में प्ले किया जाए, साथ ही साथ उन्होंने हमें ये गाना लिखकर भेजा है। सो क्यों नहीं, हम आपकी इस फरमाइश को पूरा करेंगे और शो में शामिल करेंगे इस गाने को। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग। सॉन्ग के उस पार होती है आप सभी से मुलाकात एंड देन गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।

Well, listeners, इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ अब जरा शो को आगे बढ़ाते हैं. सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और साथ ही साथ लाइफ चेंजिंग कोट्स. सो ये कोट्स कुछ ऐसे हैं जो कि बदल देंगे आपकी ज़िंदगी को, अगरचे ज़िंदगी को ना सही तो आज के दिन को तो ज़रूर बदलेंगे और ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ रोनुमा करेंगे. सो लिसनर्स, अक्सर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, हम जितनी भी कोशिश कर लें चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कभी नहीं हो सकती. ऐसे मोमेंट्स के लिए किसी ने एक खूबसूरत सी बात कही है, सो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी को अपने शो का फर्स्ट कोट बनाया जाए. सो

So our first quote says, don't rush something you want to last forever. So basically हमारा ये कोट ये कहता है कि जिस चीज़ को आप हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं उस पर कभी जल्दबाजी मत कीजिए. So अब सभी सोच रहे होंगे कि आखिर इस बात का मीनिंग क्या है. So इस बात में कितनी गहराई छिपी हुई है, आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं. हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंस्टेंट रिलेशंस. लेकिन असलियत तो ये है कि ये जो तेज़ी है, जल्दबाजी है, वो उतनी ही जल्दी गैर भी हो जाती है. सो जो चीज़ वक्त लेती है उनकी रूट्स सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं. सो बेसिकली सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें. सब्र का असल मतलब ये होता है कि आप मेहनत करते रहें और वक्त पर भरोसा रखें. अगर किसी चीज़ को मिलने में वक्त लग रहा है तो इसका मतलब कुछ यूँ है कि आपके लिए वो बेहतरीन तौर पर तैयार हो रही है. सो स्लो डाउन, ब्रीथ और वक्त को अपना काम करने दीजिए.

सो जी लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट कोट एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कोट. कितना खूबसूरत सा, मीनिंगफुल सा था. सो बेसिकली हमारा ये कोट अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो कुछ ये कहता है कि डोंट चेस थिंग्स. अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक चेस करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि वो चीज़ें वक्ती तौर पर आपको तो मिल जाती हैं लेकिन वो देर पार नहीं होती और वो हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहती. सो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके साथ हमेशा रहे, हमेशा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, सो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप वेट करें, बी पेशेंट. और अच्छा वक्त आने पर खुद ब खुद इंसान को वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं. सो ये था हमारा आज का फर्स्ट कोट. उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा इस हवाले से. अगर आपने कुछ कहना है या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको कर रहा हो थोड़ा सा डिस्टर्ब, सो आप हमें बता सकते हैं. पूरी कोशिश की जाएगी कि इसके ऊपर मज़ीद आपसे गुफ्तगु की जाए. सो वेल लिसनर्स, हमारे एक लिसनर हैं जो कि डेली बेसिस पर हमारा शो सुनते हैं, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें देते हैं. सो आज भी उनका कहना यह है कि उनके बचपन का एक गाना है जो उन्होंने किसी ही टाइम पर सुना था टीवी सीरियल में. सो वो चाहते हैं कि वो गाना मैं अपने शो में प्ले करूँ. सो क्यों नहीं, ज़रूर प्ले करूँगी ये सॉन्ग. आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक. ट्रैक के उस पर होती है आप सभी से मुलाकात एंड देन स्टार्ट करेंगे अपना आज का द स्पाइस किचन का नेक्स्ट सेगमेंट.

अब चलते हैं हमारे दूसरे कोट की जानिब। सो ये कोट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे इखलाक और हमारे इनर पीस के बारे में है। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। सो द कोट सेज हाउ पीपल ट्रीट यू इन देयर कार्मा, हाउ यू रिएक्ट इज योर्स। सो कितनी सच्ची बात है ना ये कि ज़िंदगी में अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ पूरा सुकून करते हैं, हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं और या हमारे दिल को दुखाते हैं। ऐसे वक्त में हमारा पहला रिएक्शन होता है बदला। सो हम क्या सोचते हैं कि हमें इन लोगों से बदला लेना चाहिए, वैसे ही बुरा बन जाना चाहिए जैसे कि वो लोग हमें ट्रीट करते हैं। सो लेकिन ये कोट हमें ये सिखाता है कि किसी और की बुराई का चक्कर आपको अपने स्टैंडर्ड्स कभी भी लो नहीं करने चाहिए। सो अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका ट्रीटमेंट आपके साथ अच्छा नहीं है, बट अगर आप भी उसको उसी तरह से रिप्लाई करेंगे, सेम आंसर करेंगे, सो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो आप अपना सुकून खो देंगे। सो अपने दिल को साफ रखिए, लोग जैसे भी करें आप अपना रास्ता अच्छी तरह से चलते रहें, क्योंकि दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। लोगों का काम होता है आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपको डिवैल्यू करना और साथ ही साथ आपकी जो वर्थ है उसको कम करने की कोशिश करना। सो दुनिया के जितने भी लोग हैं जो दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दरअसल वो खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ज़िंदगी में उनके काफ़ी ज़्यादा महरूमियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से हो जाते हैं। सो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर ये इंसान ऐसा कर रहा है सो माइट बी पॉसिबल उसकी लाइफ की सिचुएशन सरकमस्टांसेस ना अच्छे गुजरे हों। सो आपको अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए।

तो लिसनर्स, अगर आप अंडरस्टैंडिंग बनेंगे, दूसरों को समझेंगे और हर एक चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढेंगे, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी, तभी जिंदगी मीनिंगफुल बनेगी और तभी आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं, बुलंदियों को छूते हैं, जो कि अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्योंकि आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, हर स्टेज पर आपको 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको तनकीद करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो 2 लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। सो आपने डिसाइड करना है कि आप उन 8 लोगों की बात मानेंगे या फिर उन 2 लोगों की बात।

लिसनर्स, ये था हमारा आज का सेकंड कोट। आई होप आपको ये दोनों कोट बहुत अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव तब्दीली लेकर आएंगे और ज़िंदगी को खूबसूरत और मीनिंगफुल बनाएंगे। सो माय गर्लीज, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है द स्पाइस किचन। और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज। तो बी रेडी, क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके

तद आज का मेन कोर्स। वेल, ये क्या, अभी तो आने वाला है एक अदद कमर्शियल ब्रेक जिसकी जाने मेरा ध्यान ही नहीं गया। सो अगर अभी मैं इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ तो माइट बी पॉसिबल कि जब इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप आराम से ठीक तरीके से नोट ना कर पाएँ। सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसे फिल वक्त के लिए थोड़ा सा रोक दें और वेट करें इस कमर्शियल ब्रेक का। सो जैसे ही हम इस कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो स्टार्ट करेंगे द स्पाइस किचन की मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी और यमीएस्ट रेसिपी। तब तक के लिए लिसनर, ज़रा मैं रीड कर लेती हूँ आप सभी की रिकमेंडेशंस और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि हमारे लिसनर्स ने क्या क्या रिकमेंड किया है। सो बेसिकली हमारी एक लिसनर हैं जिन्होंने अगेन हमें एक वीकेंड का सॉन्ग रिकमेंड किया है। इनका कहना ये है कि जब से आपने शो में वीकेंड के गाने चलाना शुरू किए हैं तभी से उनका ध्यान इस जानिब किया और उन्होंने भी इन गानों को सुना है। सो वेल, ये तो अच्छी बात है कि अगर मेरी वजह से आपको कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिला, सो क्यों नहीं, ज़रूर कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर हम आपकी इस रिकमेंडेशन को ज़रूर पूरा करेंगे और इसको शामिल करेंगे अपने शो में, क्योंकि रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM एंड दैब की पूरी कोशिश होती है कि हम आपके इस दिन को मीनिंगफुल बनाएं, अच्छा बनाएं और साथ ही साथ आपके सभी पसंदीदा गानों को शो में शामिल करें। सो लिसनर्स, फिल वक्त के लिए वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रब्ता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। वेल लिसनर, जैसा कि हमारी प्यारी सी लिसनर ने कहा था कि आप ये गाना प्ले करें, सो हमने उनसे क्या कहा था कि हम ब्रेक के बाद इस गाने को ज़रूर शामिल करेंगे। सो अब वक्त आ गया है उस गाने को शो का हिस्सा बनाने का, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पर होती है आप सभी से मुलाकात एंड देन स्टार्ट करते हैं द स्पाइस किचन को।

सो जितने भी ड्राई स्पाइसेस हमें चाहिए उसमें सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1.5 टीस्पून, साथ ही साथ कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून एंड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब नमक की बात कर लें, सो नमक हसबे ज़रूरत, हसबे जायका एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट शुगर। सो 1.5 टीस्पून हम शुगर ऐड करेंगे। इन केस अगर शुगर नहीं हो तो हम हनी ऐड कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप शुगर ऐड करें, क्योंकि शुगर क्या करेगी, आपके सभी मसालों को अच्छे से बैलेंस कर देगी। सो हमारी अब इस रेसिपी में जो हमने एक रॉयल फिनिश देना है उसके लिए हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून और साथ ही साथ फ्रेश क्रीम 2 to 3 टेबल स्पून। अब ये थे वो सब इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। सो सबसे पहले एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल गरम कर लें और फिर इसमें शामिल करें प्याज, टमाटर, काजू, लहसुन अदरक का पेस्ट और ढेर सारी हरी मिर्चें। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इनको 5 से लेकर 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, जब तक कि आपके टमाटर बिल्कुल नरम ना हो जाएं। अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को ठंडे होने देना है। सो ठंडे होने के बाद इस मिक्सचर को ऐड करें ब्लेंडर में और थोड़ा सा पानी इसके साथ शामिल कर लें ताकि एक स्मूथ और थिक सा बैटर बन जाए। सो पेस्ट को छानी से अच्छी तरह छान लें ताकि जो ग्रेवी है वो बिल्कुल एकदम सिल्की हो और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई पार्टिकल्स ना हो। होता है ना कि समटाइम्स गरम मसाले या फिर प्याज, इनके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो कि ग्रेवी को स्मूथ नहीं रहने देते। सो बेटर ये है कि आप अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको छान लें। अब बारी आती है ग्रेवी की भुनाई की। सो अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाही ले लेंगे जिसमें हम गरम करेंगे बटर, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इन दोनों को ही ऐड करके अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे छोटी इलायची। अच्छा, अब इन सभी मसालों को 30 सेकंड के लिए अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और साथ ही साथ दाल डालकर अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि मसाला बिल्कुल भी जले नहीं। इसके तौरन बाद तैयार किए हुए टमाटो कैशियर पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम पर 8 से लेकर 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ग्रेवी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। सो जैसे ही हमारी ग्रेवी हो जाए सॉफ्ट, ग्रेवी में धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और शुगर, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे, साथ ही साथ कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। अगर ग्रेवी ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 कप गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होती तो ये ऑप्शनल है, आप बिल्कुल भी मत ऐड कीजिए। लेकिन अब बारी आती है फाइनल स्टेप की। सो अब हम इसमें पनीर शामिल कर देंगे, ठीक है, साथ ही साथ हम इनको बिल्कुल हल्की आंच में आराम आराम से पकाएंगे, सो ताकि जो पनीर के टुकड़े हैं वो बिल्कुल भी ना टूटें।

सो वेल लिसनर्स, अब आई आती है हमारे फाइनल स्टेप की। सो अब हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, फ्रेश क्रीम और अच्छे से कवर कर देंगे। फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और पकाएंगे 2 से लेकर 3 मिनट तक। सो 2 से लेकर 3 मिनट तक जब हम इसको अच्छे से दम देकर रखेंगे तो फाइनली हमारी गर्मा गर्म बटर नान गार्लिक हो जाएगी तैयार। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से नोश फरमाते हैं। वेल, इसका कॉम्बिनेशन रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अगर आप हैं चावल लवर, सो चावलों के साथ भी खाया जा सकता है। वेल, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये थी हमारी आज की फर्स्ट एंड द मेन कोर्स रेसिपी, विच इज़ द इंडियन रेसिपी, एंड आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। जस्ट इन केस अगर आपका इस रेसिपी के हवाले से है कोई सवाल, या आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, या फिर कोई प्रोसीजर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, सो उसके लिए तो लिसनर्स, उसके लिए आप हमें 01157100971 इस नंबर पर जाके बता सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद हैं और मैं किस तरह की सीरीज़ स्टार्ट करूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कल से हम एक कुकिंग सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें डेली बेसिस पर हम उन रेसिपीज़ को शामिल करते हैं जो हमारे सभी लिसनर सीखना चाहते हैं। सो मेरा मोटिव तो यही है कि कल से लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ अलग, कुछ मुनफरद सी रेसिपीज़। सो देखते हैं कि हमारे लिसनर्स किस तरह की रिकमेंडेशंस भेजते हैं। तो लिसनर्स, ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। सो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही आज के डीवा डायलॉग के इस सफर का हुआ जाता है इख्तिताम। वेल, बातें जाते करते करते, गुफ्तगू करते करते वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अभी तो बाकी थी बहुत सारी डिस्कशन, बट अनफॉर्चुनेटली शो का वक्त हो चुका है ख़त्म। सो अब वाइंड अप करना पड़ेगा। सो जाते जाते एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि हमारे आज का कोट क्या कहता है। हमारे आज का कोट ये कहता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में फोकस करना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए ज़िंदगी में। साथ ही साथ अगर दूसरे लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, सो आपने उन सभी चीज़ों को खुद पर हावी नहीं होने देना। ज़िंदगी तभी खूबसूरत बनती है जब आप अपने आसपास इर्द गिर्द की चीज़ों का ध्यान नहीं करते, क्योंकि ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बहुत सारे काम काज और टेंशनें होती हैं। सो अगर आप आसपास की कम्युनिटी की टेंशन को भी खुद पर सवार कर लेंगे तो ज़िंदगी मज़ीद बन जाएगी मुश्किल। सो आपने क्या करना है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, सिंपल बनाना है और साथ ही साथ मीनिंगफुल। सो इस खूबसूरत सी बात के साथ ही डीवा डायलॉग के सफर को करते हैं अलविदा। आप सभी से मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ और एक नए एम्बिशन के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। सो डियर लिसनर्स, जाते जाते एक खूबसूरत सा गाना मैं आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूँ। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक एंड देन यहीं से करते हैं शो को अलविदा। सो स्टे ट्यून विद अस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलू राज की।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो सॉरी, थोड़ी बहुत चिड़ियों की आवाज़ भी सुननी चाहिए ताकि आपको आइडिया रहे कि सलवार जो है वो आ चुकी है। अभी के लिए जो है वो एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था प्रोग्राम में, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन उसी के साथ इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी आपके साथ जारी रहेगा। प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट। पर इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाना चाहे आज के दिन के हवाले से आप पहुँचा सकते हैं, या फिर कोई मैसेज किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहे, या फिर कोई ऐसी नसीहत किसी के नाम करवाना चाहे जिनको आप खुद नहीं कुछ बोल सकते, तो आप मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बोलना जो है वो नहीं पड़ता, मतलब चुप रहना पड़ता है। चुप रहना ही बेहतर होता है। तो अगर किसी को कोई भी नसीहत देना चाहे तो मुझे लाजमी बताइए, मैं प्रोग्राम का नाम लेकर शामिल कर दूंगी और उनको समझा भी दूंगी। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि जाओ जो भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, आप मेरी बातों पर अमल करें, और जिसने भी मेरी बातों पर अमल कर लिया तो मैं ये समझूंगी कि मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका।

मैं ड्राइव करते हुए इस ट्रैक को सुनते हुए बहुत मज़ा आता है, और मुझे यही लग रहा है कि जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं आपको भी ये चीज़ अच्छी लग रही होगी, ये ट्रैक अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये ट्रैक जो है वो ड्राइव करते हुए बहुत मज़ा आता है, और जो पैसेंजर पीछे बैठे होंगे वो तो अलग लेवल का इंजॉय कर रहे होंगे। अभी मेरे पास बहुत से मैसेज आए हैं प्रोग्राम में शामिल करवाने के लिए, लेकिन अभी टाइम जो है वो एक कमर्शियल ब्रेक का होने वाला है, सो ये ना हो कि मैं प्रोग्राम में छोटे छोटे मैसेज हैं वो शामिल कर दूं, लेकिन फिर उनको डिस्कस करने में मुझे जो है वो वेट करना पड़े। सो यही करेंगे कि अभी जो है वो कमर्शियल ब्रेक को इन्जॉय करेंगे, मेरे पास अभी ट्रैक्स की फरमाइश भी मौजूद है, सो उसको भी ज़रूर पूरा करेंगे। मैंने सोचा था क्यों ना अपनी फरमाइश को भी थोड़ा सा पूरा कर दिया जाए, क्योंकि मैं डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटी करती हूँ, जो भी चीज़ सुनती हूँ, जो भी समझती हूँ, वो मैं सीधा आकर जो है ना आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और मेरे ख्याल में करनी भी चाहिए। आपकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है वो भी आप मुझसे शेयर किया करें। सुबह उठ के डेली रूटीन पे आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद क्या करते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं। अगर आप नाश्ते के बारे में मुझे बताएंगे तो मैं आपको हेल्दी नाश्ते का भी बताऊंगी जो आपकी सेहत को ठीक रखे।

लेकिन वो तभी होगा जब आप मुझे बताएंगे, मेरे बताए गए नंबर मुझे करेंगे छोटा सा मैसेज। नंबर आपको अगेन नोट करवा देती हूँ, जिन नए लोगों ने आज अभी फजन 7.14 उनके बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। नंबर नोट कीजिएगा 01157100971। बट बात कर रहे थे डेली रूटीन के हवाले से, जो जो एक्टिविटी आप करते हैं, फिर उठ के बाहर जाना, आना जाना, दोस्तों की तरफ जाना, ये सारा सीधा मुझे बता देना। कल है भी जो है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन जो है वो दिस इज़ मोस्ट वेरी स्पेशल डे। फ्राइडे एक दिन ऐसा दिन होता है जिसमें हम अपने काम का छोड़कर अपने रब के पास जाते हैं, और एक वही दिन मेरे ख्याल में बेस्ट होता है जो हमें अपने रब से कॉन्टैक्ट में रखवा सकता है। वैसे तो हम अपने रोज़मर्रा की रूटीन में बिजी होते हैं, काम काज करना, ये करना, वो करना, तो वेल उन चीज़ों में जो है ना वो टाइम भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए अपने रब के लिए भी। खैर अभी के लिए जो है प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, कमर्शियल ब्रेक उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड ऐप, मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सर आज की सवाल। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो एक छोटी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक पा रही है आपसे मुलाकात। एक छोटा सा प्रोग्राम प्रोग्राम में शामिल करवा देते हैं। हमें पाकिस्तान से सुन रही हैं, लाहौर से सानिया ने हमें मैसेज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सलूराज? सलूराज एकदम ठीक फिट फाट, आप बताएं आप कैसे हैं? और बड़े खूबसूरत सा मैसेज उन्होंने प्रोग्राम में शामिल करवाया कि मुंह में जुबान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सर दिस इज़ मतलब बहुत मज़े की लाइन, अगर इसको हम डीपली जो है वो डिस्कस करें तो बहुत बहुत सी बातें निकल आएंगी जो मुझे भी नहीं पता होंगी, बट इसके हवाले से मुझे भी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ पता ही है। और जाहिर सी बात है, इन हर इंसान को बताती है कि फसाद की जड़ जो है वो ज़ुबान ही होती है, तो आपको अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए। बहुत से मामलों पर, बहुत सी जगहों पर हमें खामोश रहना पड़ता है, हमें चुप रहना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि या तो अगला बंदा जो है वो ख़ास होता है, या फिर उस टाइम पर वो माहौल नहीं होता, या हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मेरे उस्ताद हैं तो उन्होंने ये बात की थी कि हर जगह जवाब नहीं देते, कुछ जगह पे जवाब भी बनता है। खैर, ये छोटा सा टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करवाया है कि मुंह में जुबान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं उसे संभाल के रखते हैं। सो वेल, इसके रिलेटेड अब बात करें तो अभी इसको प्रोग्राम में शामिल तो मैंने करवा दिया है, लेकिन अब कोशिश ये करते हैं कि इसको जो है आप इसके बारे में भी रिसर्च करें। अगर आपको इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पता तो आप भी मुझे बताइएगा, मैं भी आप तक इसके बाद से इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगी। और अभी जो है प्रोग्राम एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मेरे पास मौजूद है, उसको शामिल करके फिर जो है आपके साथ डिस्कस को कैरी ऑन करते हैं, अपनी गपशप को कैरी ऑन करते हैं। बोला सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैप।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलोर आज के सुर। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था एक छोटी सी फरमाइश पे, उसी के साथ अभी मेरे पास जो है वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने हैं आपके साथ। टॉपिक कुछ इस तरह से था कि मुंह में जुबान तो सबके सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जिसे संभाल के रखते हैं। सो मतलब इसके बारे में डिस्कस की जाए तो मुंह में जुबान तो सभी रखते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इसको किस किस किस जगह पे यूज़ करना है ये हर किसी को नहीं पता होता। इसका असली मतलब यह है कि हर इंसान जो है वो बोल सकता है, लेकिन असल खूबी उस शख्स में है जो अपनी ज़ुबान पर काबू रखता है उन सिचुएशन पर, उन मामला के टाइम पे जहाँ पर लगे कि मामला जो है वो बिगड़ने वाला है, तो वहाँ पर खामोश ही रहना चाहिए। सोच समझ कर नरम लहजे में और मुनासिब मौके पर जो है बात करना ही जो है वो समझदारी की अलामत होती है। गैर ज़रूरी बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे जो है अगले को नुकसान हो या अगले को जो है दुख पहुँचे। कोशिश ये करें कि जब आप किसी से किसी भी तरह की गुफ्तगू करते हैं तो कुछ इस तरह से गुफ्तगू करें कि उसको आपकी कोई बात बुरी भी ना लगे।

ये गोल इंसान को अपनी ज़ुबान पर काबू रखने और सोच समझ कर बोलने और दूसरों को अपनी बात से तकलीफ़ ना पहुँचाने की जो है ना वो बात पेश करता है। मतलब कोशिश यही है कि आप दूसरों को जो है वो नुकसान ना पहुँचाए अपनी बातों से, अपने लहजों से। यही वजह है कि हमारी माशरती और मजहबी रवायात में भी जो है ज़ुबान की हिफाजत को बहुत अहमियत दी गई है। इससे मिलते जुलते और चंद गोल भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कम बोलें, हम अगर ऐसा बोलें के बाद जो है वो बात की कदर की जाए, बोलने से पहले सोचें, क्योंकि अल्फाज जो है वो वापस नहीं आते।

इस बात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बोलने की साहित नहीं, बोलने की साहित सिर्फ रखनी, बल्कि अपने अल्फाज पर अख्तियार करना है, अपने ज़ुबान पर अख्तियार करना है, अपने मुँह से निकाले गए उन अल्फाज पर अख्तियार करना है जिनसे आपको ये लगे कि इंसान का नुकसान हो सकता है। एक इंसान की शख्सियत, अहलाक और तरबियत का अंदाज़ा अक्सर उसकी गुफ्तगू से ही लगाया जाता है। सो कोशिश ये करें कि गुस्से में भी गर्म कह रहे, सॉरी नरम लहजे में बात करें, किसी की दिल आज़ारी से बचें। सो वेल, अभी जो है प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक को शामिल करेंगे। मेरा आज गला भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके दरमियान ट्रैक ही प्ले कर दूँ। आइए सुनते हैं इस छोटे से प्यारे से मैशअप किस किस बारे ये आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज बाज़ आप सुन रहे हैं सलोराज की सुलसी के साथ। प्रोग्राम में जो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक इस बार ही आपसे मुलाकात। स्टूडियो की डल मशीन पे वक्त हुआ जाता है हमारे लास्ट सेगमेंट का, यानी कि हमारा जो आखिरी और पहला सेगमेंट, पहला और आखिरी सेगमेंट होता है वो म्यूजिक का रखा होता है मैंने, और उम्मीद करती हूँ कि आपका साथ ठीक तरह से हम निभा रहे होंगे। बट कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, कोई फरमाइश पूरी करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, कोई ट्रैक आप हमें डेडिकेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर ये मत बोलिएगा कि जो पहले से फरमाइशें की हुई हैं उन्हें तो पूरा कर दीजिए। वह हम आपको आपकी फरमाइशों को ज़रूर पूरा करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोई नसीहत किसी को फिर से करवाना चाहे तो मुझे लाजमी बताइएगा, और साथ ही में जो है वो अगर आप भी अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं तो आप हमारे मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं। radiofaza.co.uk गूगल पर सर्च कीजिएगा और आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से आप हमारी मार्केटिंग टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मेरा दिल है बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आप तक अपनी आवाज़ भी पहुँचाई जा सकती है और मज़े मज़े के ट्रैक्स भी आप तक पहुँच जाएँ। हसन रहीम की प्यार की आवाज़ आपके अपने दरमियान शामिल कर चुकी हूँ। जहाँ पर बात हो ना हसन रहीम के गानों की, वहाँ पर मैं दिल करता है कि मैं चुप ही हो जाऊँ, क्योंकि मुझे हसन रहीम की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि फिर जो जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी, और वही बात आगे कि डेली रूटीन की, डेली जो मैं एक्टिविटी करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो सुबह उठते साथ में ट्रैक सुनती हूँ वो ट्रैक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस दुनिया के जाल असली दिखाए थे, दिल अभी भी रखे उन लम्हों की ख्वाहिश जो सोबत ने तुम्हारी दिखाए थे। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊँ, मैंने हसन रहीम, मतलब मुझे मेरी फ्रेंड ने दिखाया था हसन रहीम की, जब शादी हुई थी उसकी वीडियो वगैरह, बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये वाला गाना, मतलब मैं बहुत से गाने हसन रहीम के सुनती हूँ, मुझे ये था कि मतलब वो, मुझे आइडिया नहीं था कि वो इन्होंने गाए हुए हैं। लेकिन जब मैंने इनके लिखे हुए, इनके गाए हुए, जब मैंने उनकी वीडियो हसन रहीम को सर्च किया तो मैं अचानक से देख के हैरान रह गई। मतलब हसन रहीम शादीशुदा निकला, मतलब वही फिर मुझे याद है कि हाँ मैंने उन दिनों में इनकी वो शादी वाली वीडियो भी देखी थी, मतलब वो क्रश टूट गया। अब फिर तलहा की बात याद आ गई कि तलहा जंग को जब एक तरफा मोहब्बत होती है वो उस पर ट्रैक लिख देता है, तो फिर मेरा ख्याल से मुझे भी ट्रैक लिख ही देने चाहिए। अब कुछ लोग ट्रैक लिख देते हैं, कुछ लोगों को शायरी में इंटरेस्ट होता है, मुझे शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक दो दफ़ा जो है ना मैंने, मुझे तो मुझे ट्रैक लिख भी लूँ ना तो मतलब मेरी आवाज़ भी अच्छी है, मुझे सब काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं। सुबह फिर वही बता गई कि इंटरेस्ट जो है ना वो जिस चीज़ में होता है उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इन प्लान्स को, इन गोल्स को सिर्फ अपने तक महदूद रखें, ना कि दूसरों तक पहुँचाएँ। अब इस ट्रैक के कुछ कुछ लिरिक्स इतने मजे के हैं ना, मतलब क्या ही बात है यार। रात दिल मेरे मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी फरमाइश को पूरा करने से पहले आपके साथ जो थोड़ी गपशप लगानी है उसमें हम बैकग्राउंड म्यूजिक, म्यूजिक को बीजीएम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और उसको चेंज कर हम हसन रहीम की आवाज को शामिल कर देते हैं। मतलब कुछ मैंने बहुत से सिंगर्स की आवाज़ सुनी है और बहुत कम जो है मुझे पसंद आती है, और सॉफ्ट सॉफ्ट के बाद अब समर जाफरी की आवाज़ को देखा जाए तो समर जाफरी के ट्रैक बहुत मज़े के होते हैं, सॉफ्ट ट्रैक होते हैं, और उनको सुनने के बाद ऐसा फील होता है कि मतलब ज़िंदगी में एक शांति सी आ गई है, मतलब शांति हो गई है, तो वो हल्की सी, हल्के से लहजे में वो उसको गुनगुनाते हैं, बट उनका जो लहजा है, उनका जो, उनकी जो बीट है वो बहुत मज़े की होती है। और मेरे ख्याल में सिंगर हम बन भी ऐसे सकते हैं कि जब हमने गाना गाना होना तो ज़्यादा चीखने की जरूरत नहीं होती, नरम लहजे में जो रह के ना हम गाने को प्ले कर सकते हैं। बस अब इसी के साथ साथ गला मेरा गड़बड़ करने लग गया, सो हम कोशिश ही करते हैं कि प्रोग्राम में जो है ट्रैक को शामिल कर लिया जाए। अभी के लिए जो हमारे पास एक छोटा सा ट्रैक है इसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक छोटी फरमाइश है उनको पूरा करेंगे,
آپ پھر اس کے اس پار آپ کے اپنے درمیان ایک اور اور فرمائشوں کو پورا کریں گے. ٹائم بہت کم رہ چکا ہے میری میرے پاس ٹریک میں بہت زیادہ ہے پلے کرنے کے لیے.

अभी मैंने जैसे स्लो बीट वाले ट्रैक लगाना शुरू कर दिया ना, मुझे लग रहा है कि मुझे प्ले भी ऐसे करने चाहिए, लेकिन अभी फरमाइश जो है वो काफ़ी डिफरेंट सी आ रही है। सो वेल आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, रूह पोश मूवी से लिया गया ट्रैक, छोटी सी फरमाइश भी प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक को उस पर आपसे मुलाकात। सो स्टेडियम 107.1 FM एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंचबॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं बिल्कुल हमारी, यानी कि सरराज के। अभी बस मैसेज आया था कि इस ट्रैक को दोबारा से प्ले कर दिया जाए, सो आई इस ट्रैक को एक बार फिर से सुन लेते हैं। इस ट्रैक को आपसे मुलाकात, सो स्टे ट्यून्ड 97.1 एफएम एंड डैप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.

वेलकम बैक टू रेडियो फजा FM 97.1। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका मेजबान हुज़ैफ़ा हैदर और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम, जहां बातें भी होंगी, मुस्कुराहटें भी बिखेरेंगे, यादों की खुशबू भी होगी और जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली बातें भी। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत, खुशी और सुकून वाली जिंदगी अता फरमाए। अगर आप इस वक्त सफर में हैं तो अल्लाह आपका सफर आसान फरमाए, दफ्तर में हैं तो आपके कामों में बरकत अता फरमाए, और अगर घर में अपने प्यारों के साथ हैं तो अल्लाह आपके घरों को हमेशा मोहब्बतों और रहमतों और खुशियों से आबाद रखे। दोस्तों, जिंदगी का हर दिन अल्लाह ताला की एक नई नेमत है। कभी हम मसरूफियात पे इतने खो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं रहता कि हमारे पास कितनी नेमतें मौजूद हैं। इसलिए आज के दिन की शुरुआत ही अख्तिताम, जहां भी आप हमें सुन रहे हैं, एक लम्हे के लिए रुक कर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि शुक्र गुजार दिल हमेशा सुकून पाता है। और जी हाँ, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, आपकी पसंदीदा मौसीकी भी, खूबसूरत पैगामात भी, मालूमाती गुफ्तगू भी, और कुछ ऐसी बातें भी जो शायद आपके दिल को छू जाएं। अगर आप किसी अपने के नाम की खूबसूरत पैगाम देना चाहते हैं, सालगिरह की मुबारकबाद देने हो, किसी दोस्त को सलाम कहना हो या किसी गाने की फरमाइश करनी हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपना पैगाम भेज दीजिए, हो सकता है अगला पैगाम आप ही का हो। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत सोच के साथ। जो इंसान दूसरों की आसानी का सबब बनता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी आसानियां पैदा कर देता है कि जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, और अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि नेकी कभी जाया नहीं जाती, वो किसी न किसी सूरत वापस जरूर आती है। अच्छा दोस्तों, अब वक्त हो गया खूबसूरत नगमे का। मौसीकी के इस मुख्तसर वक्ते के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ दिलचस्प पैगामात आपकी फरमाइशें और मजीद खूबसूरत बातों के साथ। सुनिएगा

वेलकम बैक। एक बार फिर आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूं आपका दोस्त हुज़ैर फहद। उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत नगमा पसंद आया। अगर आप ये अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो भी हमें मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। चलिए अब शामिल करते हैं आज के कुछ खूबसूरत पैगाम। ये पैगाम आया झेलम से अहमद की तरफ से। लिखते हैं कि रजा भाई, सॉरी हुज़ैफ़ा हैदर भाई, आपका प्रोग्राम रोज सुनते हैं, आपकी आवाज़ दिन भर की थकन उतार देती है। मेरी तरफ से अपने तमाम घर वालों खासतौर पर अपने वालदैन के नाम एक खूबसूरत गाना प्लीज। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, वालदैन का साया सलामत रखे और आपकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। ये गाना हम आपको डेडिकेट करते हैं, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
5: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

वेलकम बैक दोस्तों, आज की मालूमाती बातें भी सुनते चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराना सिर्फ दूसरों को खुश नहीं करता बल्कि आपके अपने ज़हनी दबाव को भी कम करता है। साइंस भी ये कहती है कि जब इंसान मुस्कुराते हैं तो जिस्म में ऐसे हार्मोन खारिज होते हैं जो खुशी और सुकून का एहसास पैदा करते हैं। तो आज फैसला कीजिए, किसी न किसी को ज़रूर मुस्कुराने की वजह देंगे। और अब एक खूबसूरत शेर मुलाहजा कीजिए। चराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। मोहब्बतें खुद नहीं मिलती, निभाई जाती। चलिए दोस्तों, एक खूबसूरत नगमे की तरफ चलते हैं और वापसी पर करेंगे कुछ दिलचस्प सवाल और जवाब। मजीद पैगाम और सुनाएंगे एक छोटी सी सबक खामोश कहानी, तो कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1।

0: टेक्नोलॉजी। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1 और इस वक्त हम आपके लिए ओल्ड गाने प्ले कर चुके हैं आपकी ख्वाहिशात को और आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए। उम्मीद है कि गाने आपको पसंद आए होंगे। अगर आप भी अपने किसी खास के नाम कोई खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं तो अभी हमें अपना पैगाम भेज दीजिए, हो सकता है अगली फरमाइश आप ही की हो। दोस्तों कभी गौर किया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। पैसा अगर चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर गुजरा हुआ लम्हा वापस नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि अपने वक्त को लोगों पर खर्च कीजिए जो आपकी कदर करते हैं। अपने ख्वाबों पर जरूर खर्च कीजिए, क्योंकि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि पूरे करने के लिए होते हैं।

0: commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाय गाइस, आई होप ये आपको मैशअप पसंद आया होगा, ओल्ड टू न्यू पार्ट 4। और अगर आप इसका पार्ट 5 चाहते हैं तो
1: प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल हू विश ऑफिशियल, और कमेंट में बताएं कि सबसे अच्छा गाना आपको इस पार्ट में क्या लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आप जिनको भी जानते हैं, एंड गिव इट अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक्ड इट। सो थैंक यू सो मच एंड

आज आपको एक ऐसी दिलचस्प बात बताते हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। क्या आप जानते हैं कि शहद वो वाहिद कुदरती गज़ा है जो अगर सही तरीके से महफूज रखी जाए तो बरसों बल्कि हज़ारों साल तक भी ख़राब नहीं होती। माहिरीन को कदीम मकबरों से भी ऐसा शहद मिला जो इस्तेमाल के काबिल था। कुदरत की ही छोटी छोटी निशानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया कितनी हैरत अंगेज़ है।

0: कुछ ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो में हूँ आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक अदद और खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, जबरदस्त आवाज के मालिक और खूबसूरत सी आंखों वाले उस्मान खान के साथ बैठे हुए एक बंदे, जिनको हम प्यार से क्या कहते हैं, हम प्यार से
1: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और एक प्यार भरा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम। मैं हूँ आरजे मौज़म और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम एंड डैब, जो हर वक्त हर जगह सिर्फ आपके लिए।
0: उम्मीदवार के जनाब, जो जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा, और ना सिर्फ खुशबाश होगा बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल भी होगा। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मैं और मौज़म करेंगे आवाज और बातों का जादू, और उम्मीद है कि हमारे इस जादू में आप जरूर आएंगे। बस मौज़म में थोड़ी सी एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, अब मेरे जैसा बंदा जो एकदम सारी एनर्जी एक ही दफ़ा ज़ाया कर देता है, लेकिन मौज़म जैसा बंदा बड़ा समझदार होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले बाकी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है मौज़म?
1: जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर हम अपने ऑडियंस के साथ दो घंटे तक रहते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी लिसनर हों जो आखिरी लम्हे में या आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक आरजे मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब आरजे के लास्ट सेगमेंट होता है ना, तो आरजे की इन सिंपल के बस हुई होती है और बोल बोल के, और वो फिर उसका दिल होता है कि सॉन्ग पे सॉन्ग, सॉन्ग पे सॉन्ग चलाऊँ।
0: अच्छा, वैसे ये एक अलग बात है मौज़ूम के हमें अपने प्रोग्राम में ऑफकोर्स दो घंटे कंटिन्यूसली बोलना बड़ा मुश्किल होता है, शायद कहने में सुनने में आसान लगता है, जो बोल रहा होता है ना पता उसे चलता है, उसमें हमें हमारी ये कमर्शियल ब्रेक्स आ गई, उसके बाद हमारे ये सॉन्ग्स आ गए, ये हमें बड़ी काफ़ी हद तक ना सहूलत दे देते हैं, जे पाए तो बगैर इन्हें चीज़ा तो बोलना पैदा फिर।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा हमें ब्रेक मिल जाती है, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और अगर एक दम से एनर्जी वेकअप हो जाए बंदा, तो मुझे लगता है कि ये ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा होता है कि मैं इस तरह इसको बयान करूँगा कि आप उठते साथ दौड़ते तो नहीं हैं, आप उठते हैं, उठ के बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दौड़ सकते हैं, जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, ये तो जनरल चीज़ है।
0: क्या ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल कहाँ पे कोट किया यार, मज़ा आ गया। इसको कहते हैं जी हाजिर दिमागी, और यही आरजेस का काम होता है, हर बात जो है वो पहली बात से मुख्तलिफ हो, और जब बात चल रही हो तो अगली बात जो है उनके जहन में होती है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मौज़ूम ने एग्जांपल दी है कि यकीनन आप डायरेक्ट उठते सार भाग नहीं सकते, आप सबसे पहले उठते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, चलते फिरते हैं, उसके बाद आप दौड़ लगाना शुरू करते हैं। ये बाकी तमाम तरह आरजेस के लिए भी एक अच्छी एग्जाम्पल थी, और कुछ ख़ास तौर पर मेरे जैसे जो आरजेस हैं उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं तो शुरू होते हैं सारी करता हूँ और फिर एंड पे थक गया हूँ।
1: जी बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको सुना है, आप वेल एनर्जेटिक बंदे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर भी आपको सुनते आ रहे हैं, पुराने सुनते आ रहे हैं, उनको भी पता होगा कि उस्मान जो है वो कोशिश करते हैं कि हर एक बंदे को साथ लेके चलें, और इनकी बातों में ऐसी बातें होती हैं कि बंदा कहता है कि हाँ दो घंटे हो गए, बस दो घंटे पूरे हो गए।
0: बस जी अल्लाह ये भरम कायम रखे जो आपके जहन में बन चुका है, और ये बात हकीकत है मौज़ूम के, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, बल्कि लोगों को ये समझाया करता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि बस इतना अमीर कर दे जितना लोग समझते हैं।
1: मुझे लगता है कि ये कार्य के लिए खुशी की बात होती है, और ये सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि बंदा अगला आपको रिस्पांस करता है और गुड रिस्पांस करता है, और इन चीज़ों को ले के साथ चलता है कि एक आरजे की हौसला अफजाई भी यही है कि आप आरजे को उसको हौसला अफजाई करें, उसकी अप्रिशिएट करें उसकी एफर्ट्स को, और कुछ
0: और यकीनन उसका साथ दें, ये सबसे पहली चीज होती है। तो इसी वजह से हम आपको बताते चले जनाब, प्रोग्राम में हम नानी बोलेंगे, आप हमारा साथ देंगे। और साथ देने का तरीका बहुत ही आसान सा है, उन तमाम तर नए लोगों को खुशामदीद कहेंगे जिन्होंने आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया और हमारे साथ साथ हैं। स्टिल 5 to 7 आपको हमारा साथ रहेगा, तो इस साथ में मजीद खूबसूरत साथ को बनाने के लिए आपका साथ किस तरह होगा ये आपको मौसम बताएंगे।
1: जी बिल्कुल, साथ देने का तरीका तो वही पुराना है जो इस वक्त नए शामिल होने हुए हैं या आज पहली बार हमें सुन रहे हैं, उनको बताता चलूँ कि अगर आप हमें अपना कुछ पैगाम या प्यारा सा कोई फरमाइश या कुछ भी हमें कुछ भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 0115710091। इस बात पे तो आरजे उस्मान तो कह रहे होंगे फिर वही 009। उस्मान मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए बोल रहा होता हूँ कि ये टाइम जो है ड्राइव थ्रू प्रोग्राम है जो वो ज़्यादातर बंदे हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, तो मैं इसलिए आराम से ज़रा करता हूँ कि
0: मतलब आसानी से वो नोट
1: कर ले ताकि कोई उनके लिए इशू ना हो, ये ना हो कि
0: बाद में नंबर इग्नोर करें क्या बोला था।
1: वो एक मैसेज करेंगे, हमने मैसेज पता नहीं कब उनका सुनेंगे क्योंकि हमें मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई एक बंदा बोल रहा होगा या मतलब मुझे लग रहा है कि ये चीज थोड़ी फास्ट हो गई है।
0: बात ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि समटाइम इवन देन हम कभी इत्तफाकन रेडियो सुन रहे हो, किसी और चैनल को हम सुन रहे हो और उसमें वो आरजे जब स्पीड में नंबर बता रहे हैं कि आप किस तरह हमारा साथ दे सकते हैं, वो जब स्पीड में नंबर बताते हैं तो गुस्सा हमें भी आता है यार, बंदा आहिस्ता बोल लेते ताकि नोट तो किया जा सके, लेकिन जब खुद के हाथ में वो स्टीयरिंग होता है ना तो कोई नहीं सफर होता, इतना आसानी से इतना आराम से नहीं बोलने होता।
1: खैर इसके अलावा हमें आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी ऐप स्टोर और या प्ले स्टोर से भी हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का नाम है रेडियो फजा 97.1 FM। इससे आपको ये होगा कि आप दुनिया में किसी भी कोने में हमें सुनना चाहते हैं तो वो आप हमें इजी टू सुन सकते हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपको कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है और इसमें आप हमारी जो वेबसाइट है radiofaza.co.uk आप डायरेक्ट उधर से भी एक्सेस उसका कर सकते हैं।
0: अवेल जनाब, ये तमाम तर रास्ते हैं जिनके थ्रू चलकर आप हम तक पहुंचेंगे। इसके अलावा आप ड्राइव करते हमें सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर भी हमें सुन सकते हैं। मजीद क्रिस्टन क्लियर वॉइस आपको वहां पर सुनने को मिल जाएगी हमारी, मैं और मौजूम आपके साथ साथ, यानी कि उस्मान खान और मौजूम अली आपके साथ साथ हैं। स्टिल 7 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा, साथ को मजीद खूबसूरत अब आपने बनाना है। कोई भी पसंदीदा गजल नज़म चंद अशआर कोई कोटेशन कोई बात कोई सलाम कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज सकते हैं आप। हवा के दोस्त पर लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे ही हमारे का कंप्यूटर की स्क्रीन पर चकमगाएगा, हजूर सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो आर यू वेटिंग, एक दफा फिर से नंबर नोट कर लीजिएगा अगर कोई एक आध नंबर आगे पीछे हो गया है तो। द नंबर इज 0115710091। ये वो नंबर है जिस नंबर को आपने नोट करना है, फिर इसको सेव करना है और फिर व्हाट्सएप पर जाकर अपने खूबसूरत से नाम के साथ खूबसूरत सा पैगाम लिखकर हम तक पहुंचा देना है। प्रोग्राम में शामिल करने बड़ी खूबसूरत सी आवाज, मौसम क्या ख्याल है इस खूबसूरत सी आवाज को सुनती हुई खूबसूरत सी समातों तक पहुंचा दिया जाए।
1: जी बिल्कुल, खूबसूरत सी आवाज़ों तक आवाज़ और खूबसूरत सी समातों तक पहुंचाया जाए और मुझे लग रहा है कि ये बात सुन के भी हमारे लिसनर के चेहरों पर मुस्कुराहट आई होगी, वहाँ यार आज तो याद कर ही लिया इन्होंने।
0: ऑफकोर्स डैड सवाल जी, एंजॉय कीजिएगा इस खूबसूरत से ट्रैक को, इस ट्रैक उस पर होगी आपसे फिर से मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ उस्मान खान और मौज़ूम अली आपके साथ फजा 97.01 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से।

जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और एक प्यार बड़ा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम, जो इस वक्त मुझे ज़िंदगी के किसी भी सफ़र पर गामजन है और मुझे सुन रहे हैं। आप सुन रहे थे सॉन्ग सनम रे, और ये काफ़ी लिसनर का सॉन्ग, ये वाला एक पसंदीदा सॉन्ग था और अभी भी है, पर ज़माना चेंज हो गया है। खैर जी, मैं वेलकम करता हूँ उन सबको जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और जो भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और जो इस वक्त मुझे न्यू, जो इस वक्त न्यू जानर है, जो न्यू लिसनर हैं, जो अभी अभी जिन्होंने फजा 97.1 FM ट्यून किया है, उनको भी मैं वेलकम करना चाहूँगा। स्पेशली माई मेरे जो ड्राइवर दोस्त हैं, ड्राइवर हजरात जो इस वक्त शिफ्ट से ऑफ करके अभी घर को जा रहे हैं, उनको भी कहना चाहूँगा हैव अ सेफ ड्राइव। आज की जो मेरी जो टॉपिक है वो बहुत दिलचस्प टॉपिक है, और वो भी लास्ट जो भी हमारा प्रोग्राम था उसके तरह ही ये भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। है जी, मेरा टॉपिक है जी, कामयाबी मेहनत से मिलती है या किस्मत बंदे को कामयाब करती है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है और टॉपिक भी रहेगा, और मैं इसमें आपसे भी कुछ सवालात करूंगा और आपके जवाबात भी उससे हासिल होंगे, और सबकी पता लगेगा कि क्या किसकी किस्मत ने साथ दिया और किसके ने कितनी मेहनत की और वो कामयाब हुआ, और उस पर उसको फ़ख्र है, उस चीज़ पे उसको फ़ख्र है कि वो आप इस वक्त हाँ मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और मैंने इतनी मेहनत की और इस वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ।

मैं ये कहता हूँ कि कामयाबी आखिर आती कहाँ से है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ मिल जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत मेहनत इंसान को कामयाब बनाती है। खैर, आपकी क्या राय है कि किस्मत अच्छी हो तो इंसान कामयाब होता है, या मेहनत करने से इंसान कामयाब होता है, या दोनों करने से इंसान को कामयाबी मिलती है? आपकी राय हमें ज़रूर चाहिए, और आप अपने साथ होने का एहसास भी दीजिए। एहसास देने का तरीका यह है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लें, 01115710971। मेरे पुराने लिसनर ये सोच रहे होंगे कि आज बैग म्यूजिक की लगाने की ऐसी वजह क्या है, तो वजह बस किसी की फरमाइश होती है, और फरमाइशें हमारा पूरा करना ही हमारा काम है, और आपके फरमाइशें ही हमारी जो है इस शो की रौनक हैं। और आज भी अगर किसी की कोई फरमाइश है, किसी ने किसी को हैप्पी बर्थडे करना है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, या कोई किसी के नाम पे पैगाम देना है, या किसी की स्पेशल वन पर्सन की कोई भी बात है, तो वो हमसे शेयर कर सकता है जी।

मुझे। मैं उन अफराद को मुहादिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस वक्त मुझे घर में सुन रहे हैं एक कप कॉफ़ी या चाय के साथ टेरेस पे खड़े होकर, या जो वो खवातीन जो इस वक्त मुझे काम करते हुए सुन रही हैं, मैं उनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ और उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप के जहर में आपके नज़र में कोई ऐसा सवाल या ऐसी कोई भी कहने के मेहनत या किस्मत के वाले से जो मेरा क्वेश्चन है उसके वाले से कोई भी आपके राय है तो वो भी मुझे शेयर कीजिएगा।

है जी, किस्मत और मेहनत की बात हो रही थी। मुझे लगता है कि मेरा मानना ये है कि किस्मत शायद दरवाज़ा खोल सकती है, और लेकिन इस दरवाजे से अंदर सिर्फ मेहनत करने से ही बंधा जाता है। जैसे कि कह सकते हैं कि एक तालबे इलम है, अगर तालबे इलम इम्तहान देता है, इम्तहान की तैयारी नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो फेल होगा, और अगर इम्तहान की तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, और तभी उसे कामयाबी मिलेगी। इसी तरह एक अगर कोई ड्राइवर है, अगर उसके ड्राइविंग करते हुए एहतियात नहीं करेगा, ओवर स्पीड करेगा या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसके हर बार किस्मत तो साथ नहीं देती, कभी ना कभी तो फड़े जाएंगे।

जी, बातें तो होती रहेंगी, अब वक्त हुआ जाता है एक प्यारे से सॉन्ग का। और सॉन्ग भी सब लोगों का फेवरेट, यहाँ कुछ लोगों का फेवरेट कैफी खलील का है, मुंतजिर। और बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, और मैसेजेस का आपके आ भी रहे हैं। मेहनत, मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट करता हूँ कि कामयाबी इंसान को मेहनत से मिलती है या किस्मत से? आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, और राय देने का तरीका वही पुराना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस के ज़रिए। और नंबर भी नोट कर लें जो इस वक्त मुझे नए लिसनर सुन रहे हैं, 01157100971। आपके जवाबात का सिलसिला जारी है, और अगले सेगमेंट में आफ्टर द सॉन्ग मैं आपके जवाबात ऑन एयर करता हूँ। और

0: Commercial Time.
1: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंघम एन डी 7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615। Only a limited number of slots available.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you.

0: ऑलराइट वंस अगेन वेलकम बैक एक खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार लौट कर आ चुके हैं वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हैं हमारे साथ साथ। अब ये होस्ट उस्मान खान और मौज़म अली आपका साथ दे रहे थे और मैं जरा सी देर के लिए जरा आए बाएं दाएं शाएं हुआ तो मौज़म ने ढेर सारी बातें जो हैं वो आपके साथ कर दी और उसमें बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक जो इन्होंने आज आपके साथ डिस्कस किया और वो यही है कि किस्मत या फिर मेहनत, इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कामयाब होने में आपका साथ दे सकती है, आपकी मदद कर सकती है। और जब हम कमर्शियल ब्रेक पर थे तो मौज़म और मैं यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम मुकम्मल किसी एक चीज़ पे डिपेंडेड हो जाएं, इन दोनों को हमें साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। मौज़म के पास बड़ी खूबसूरत सी बातें हैं और बड़े कमाल कमाल की बातें मौज़म लेके आते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ा क्या राज क्या है इतना सारी बातें इकट्ठी करने का।
1: अच्छा उस्मान, इस तरह है कि मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे लिसनर को मैं बेस्ट जो है ना बेस्ट ऑफ बेस्ट जो टॉपिक है वो एक बना के दूं और ये जो मेरी भी जो भी जो काम ये होता है या जो भी मैं डिलीवर करता हूँ इस वक्त जो बोल रहा हूँ ये प्रॉपर रिसर्च वर्क होता है और ये मैं आगे जाके अगर एक दो जो प्रैक्टिकली मैंने खुद जाके पूछा है बंदों से कि यार हाँ ये किस्मत और मेहनत में फर्क क्या है ये तो बताओ, एक तो आपके मैसेजेस तो आ ही रहे हैं बल मैं बंदों से भी फिजिकली मैंने पूछा है अपने फेलो से या दोस्तों से थ्रू मैसेजेस उनसे भी उनकी राय ली है तो मुझे लगता है जो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लिसनर को किस्मत और तकदीर में फ़र्क पता होना चाहिए और किस्मत और तकदीर में फ़र्क यही है कि तकदीर वो है जो लिखी जाती है आपकी लिख दी जाती है वो चेंज नहीं हो सकता और किस्मत बंदा खुद बनाता है और किस्मत बनाता किस तरह है मेहनत से बनाता है। ठीक है
0: तो मतलब ये इसको यूं कहा जा सकता है जैसे मैं पहले कह रहा था कि दोनों चीज़ों का ताल्लुक आपस में बहुत ज़्यादा है और बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने कोट की थी कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और सामने हमें एक पत्थर नज़र आता है और हम उस पत्थर को ये सोच कर इग्नोर कर देते हैं कि अगर तो हमारी किस्मत में हुआ तो ठोकर नहीं लगेगी और अगर किस्मत में हुआ तो ठोकर लग जाएगी।
1: जी बिल्कुल, जस्ट लाइक दैट के एक बंदा है वो कहते हैं कि जी वो मैं फेल हो गया, अगर उससे पूछो कि तुम फेल क्यों हुए हो, ऐसी क्या तुम्हारी मसरूफियात थी या कोई पेपर में मसला था या तुमने पढ़ाई नहीं की या क्या मसला था, तो आगे से रिप्लाई यही आएगा कि हाँ यार मैं तो पढ़ता ही नहीं था और भाई ना इस नौकर जी सारा साल काट गए।
0: अच्छा ये चीज़ें भी साथ साथ होती हैं, देखिए स्टडी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होती है, चाहे वो गेम्स में स्नूकर आ जाए चाहे वो फुटबॉल आ जाए क्रिकेट आ जाए कोई भी ऐसी गेम, हाँ लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से आपकी स्टडी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए या फिर आप यूँ कह लें कि अगर आप स्टडी में किसी चीज़ पर पीछे रह जाते हैं तो आप किसी गेम पर उसका इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि गेम की वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाया, होता है देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, टाइम पीरियड के दौरान हमें चलना होता है, स्टडी का एक अलग टाइम होता है गेम्स का एक अलग टाइम होता है, तो बस ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने इस चीज़ों को मैनेज कैसे करना है टाइम किस तरह हमने ने देना है। सो खैर ये तमाम तौर बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी जनाब और आपको बताते चलें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि किस्मत और मेहनत इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस चीज़ से आप ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो इसमें आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, उसके लिए आपने करना बस यही है कि आपने व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करना है, चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज पर हमसे रब्ता करने के लिए जो हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर है वो है 0115710097। इस नंबर पर आपने हमें व्हाट्सएप पर अपना जवाब लिख कर भेजना है, आपके नाम के साथ आपके जवाब को ऑन एयर किया जाएगा और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं, इसी नंबर पे हम आपके नाम एक खूबसूरत सा ट्रैक भी गिर सकते हैं। अगर लगता है आपको कि आज के प्रोग्राम में कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ स्पेशल सॉन्ग भी, ऐसा सॉन्ग जो एक अरसा हो गया आपने सुना नहीं तो आप चाह रहे हैं कि रेडियो के थ्रू सभी लोग जो हैं वो सुन सकें तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और इसी तरह बातें तो जारी सारी रहेंगी। मैं मौज़म सोच रहा था काफ़ी देर से कि क्यों ना एक अरेबिक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल किया जाए, मेरे बड़े फेवरेट हैं ये अरेबिक ट्रैक्स, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हर बंदे को चूँकि इनकी समझ नहीं आती तो इस वजह से मैं बहुत कम शामिल करता हूँ।
1: नहीं ये बात तो नहीं है उस्मान, ये बात तो नहीं है, साद के कभी गाने सुने अरेबिक?
0: साद अरेबिक है? अच्छा मुझे उसने कभी बताया नहीं, मेरा जो दोस्त साद है वो अरेबिक है,
1: उसे पूछना ना सर।
0: खैर जनाब, हंसी मजाक इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल एक खूबसूरत सा अरेबिक म्यूजिक शामिल कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। इसके उस पार हो गया, आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा हमारे साथ साथ। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम प्रोग्राम था हमारा ड्राइव जोन राइट प्रोग्राम था हमारा ड्राइव जोन। अक्सर ऐसा होता है कि मौजूम जब मेरे साथ बैठे होते हैं तो मैं पुंथला सा जाता हूं और मेरे अल्फाज जो है मेरे जबान का साथ नहीं दे पाते। खैर जी, ये डर हम निकालते हैं, तब तक आप ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिएगा।

0: ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया, इस ट्रैक के उस पार उस्मान खान विद मौज़ा मलिक आपके साथ साथ फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से। उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ साथ हैं। बेहद शुक्रिया आपका जिन लोगों ने आज पहली बार फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज किया है। अगर आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप फजा ऐप पर भी हमें ट्यून कर सकते हैं। प्रोग्राम में आज का सवाल आपसे रखा गया था कि कामयाबी का ताल्लुक जो है वो किस्मत से है या फिर मेहनत से है। सो हमारे साथ चंद लिसनर्स मौजूद हैं, खूबसूरत से मैसेजेस करते हैं। पहले हमारे साथ हैं जी अली, हमारा साथ देते हैं और अली नॉटिंघम से साथ दे रहे हैं। लिखते हैं कि मेरे ख्याल में कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है, किस्मत मौका दे सकती है लेकिन मेहनत ही इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाती है। बहुत खूब अली, बाकी मौका सबको मिलता है लेकिन उसे कामयाबी में बदलने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है। और हम लोग आज के दौर में मौसम हमारे साथ ये मसला बन चुका है कि हम लोग ना आज के दौर में मेहनत करना ही नहीं चाहते, मतलब हम लोगों का दिल ही नहीं करता मेहनत करने को, पता नहीं ऐसा क्यों है।
1: और मैंने ये भी नोट किया है कि कुछ लोग हर एक चीज़ को इस बात पे टाल देते हैं, ओ यार साड़ी किस्मत नहीं होगी।
0: मतलब वही ना, अपनी जो है वो मेहनत नहीं करनी और हर चीज़ को किस्मत पर डाल देना है। खैर अली, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा खूबसूरत सा आपने जवाब दिया, मेरे दिल को लगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ रहेंगे प्रोग्राम के लास्ट तक। ऑलराइट, इसके बाद रोहित हमारा साथ देते हैं और लिखते हैं कि मैं यूके एक छोटे ख्वाब के साथ आया था, शुरू में बहुत मुश्किल हुई लेकिन आज अपनी मेहनत से अच्छी जॉब कर रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड, यानी कि आपने सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो किस्मत में नहीं डाली बल्कि आपने मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। चलिए जी, गुड, बेस्ट ऑफ लक, और मेरी तो दुआ है कि आप हमेशा कामयाब हों। और रोहित, आपकी कहानी यकीनन बहुत से लोगों के लिए हौसला अफजा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस छोटी सी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे आपसे, और वो भी आज से सब कुछ किस्मत पर छोड़ने के बजाय मेहनत करने पर तवज्जो देंगे। नॉटिंघम से एक और मोहतरमा हमारा साथ देती हैं और कहती हैं कि मैंने 3 बार ड्राइविंग टेस्ट दिया लेकिन 4th बार पास हुई। आज समझ आया कि हार मान लेना सबसे बड़ी नाकामी होती है। आयशा हमारा साथ देती हैं नॉटिंघम से। वाह आयशा, यही जज्बा इंसान को कामयाब बनाता है। अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो यकीनन आपको नाकामी से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और हमेशा सिर्फ किस्मत के सहारे पर नहीं चलना चाहिए बल्कि खुद भी मेहनत करनी चाहिए। वेल जनाब, मजीद मैसेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हम उन्हें गाहे बगाहे शामिल करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मजीद हमारे लिसनर्स को, जिन लोगों ने अभी तक मैसेज हमारे पास छोड़ दिए हैं, उनके मैसेज हम ज़रूर शामिल करेंगे। कहीं नहीं भाग रहे, कहीं नहीं छोड़कर जाएंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले सुनाएंगे आपको ये खूबसूरत सी आवाज़। सो रहिएगा हमारे साथ, इस आवाज़ के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान, और हमारे साथ जो सेकेंड पर्सनैलिटी मौजूद है उनको क्या कहते हैं?
1: और मुझे कहते हैं मौसम अली।
0: हाय माँ सदके जाए। वेल जनाब, गुरु रंधावा की खूबसूरत सी आवाज़, सभी खूबसूरत सी समातों की नज़र इस आवाज़ के उस पार होगी आपसे मुलाकात। बस रहिएगा हमारे साथ साथ।

0: जी हाँ जनाब, हाय नीट डेटेड गबड़ू, क्या था ये गाना? अच्छा एक सेकंड पहले, रिटर्नली मैं खुद साथ साथ इसके गुनगुना रहा था और देखो एक सेकंड के बाद मैं भूल गया गाना कौन सा था। मुझे लगता है मेरे और गजनी में ना सिर्फ बालों का फर्क रह गया, बाकी दोनों की याददाश्तें जो है ना वो सेम सेम ही हैं। वो तो खैर फिर भी जनाब जो है वो 4-5 मिनट ले लेते थे बात को भूलने में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं विद इन फ्यू सेकेंड से वो बात भूल जाया करता हूँ। पता नहीं उम्र का तकाजा है या फिर कुछ हालात अपने नासाजगार से चल रहे हैं जिसकी वजह से बातों के दरमियान से बात निकलती हुई बात भूल जाता हूँ। हाँ लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो फिर हो जाता है अक्सर ऐसे कामों में। और उस्मान खान आपके साथ हैं, गुरु रंधावा की आवाज आप सुन रहे हो, और नेक्स्ट भी गुरु रंधावा की आवाज ही आप सुनेंगे। ये मेरा मोस्ट फेवरेट ट्रैक रहा है। किसी दौर में जब ये नया आया था उस वक्त मुझे ये बड़ा ही पसंद आया था और मैंने प्लेलिस्ट में इसको रिपीट पे लगा के इतना सुना कि गुरु रंधावा ने मुझे कॉल करके कहा कि बस करो भाई, मुझे इतनी हिचकियाँ आ रही हैं और छींकें आ रही हैं कि मुझे मेरा गाना इतनी रिपीट पे कौन सुन रहा है। खैर पार्ट ऑफ जोक, और ये तमाम दर बातें जो हैं प्रोग्राम में इसीलिए की जाती हैं ताकि आप थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्माइल जो है वो हम लेकर आ सकें, और इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी होता हूँ और बहुत हद तक नाकाम भी होता हूँ। लेकिन खैर कामयाबी और नाकामी दोनों जो हैं वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब आप मेहनत करते हैं या नहीं करते इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। मैंने तुझे कड़ा महीने का राशन पा के देना है। सब कुछ कह गया। लीजिए जी इसी खूबसूरत से आवाज को एंजॉय करें, इसके बाद लौट करेंगे फिर मजीद गपशप करेंगे और मौजम और मैं और आप तीनों साथ साथ इस खूबसूरत से ड्राइव जोन में रहेंगे।
1: जी बिल्कुल इसी तरह है और एंजॉय करें। गुरु रंधावा वाकई उस्मान ये सबकी फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट सिंगर हैं और मेरे भी प्ले लिस्ट में किसी दौर में ये रहे हैं।
0: शुक्र है मैं कल ही पागल नहीं सा। चले खैर से गपशप जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत सी आवाज को मुकम्मल सुनते हैं, फिर लोड कर वापिस आएंगे, फिर मजीद इस पे डिस्कस करेंगे।

0: जी हाँ जनाब, लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया, पता नहीं इनको क्या ही मैं अब कह सकता हूँ। खैर जी, गुरु रंधावा साहब थे तो मर्जी उन्हीं की चलेगी जी, उनका गाना था, उनका खर्चा था, हम कौन होते हैं इस पे डिस्कस करने वाले। अवल बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दर जमातों का जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। एक मोजम साहब के बड़े खूबसूरत से दोस्त, बड़े प्यारे से उनके दोस्त हैं, क्या नाम है जी, राफे राजा इस वक्त हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया से, और बहुत शुक्रिया जी आपका हमारा साथ देने का। और ठीक हो गया बिल्कुल, आपका मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने हमारे साथ एक छोटा सा वाक्य जो शेयर किया है, जिसका ताल्लुक जो है इनके वाक्य को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि वाकयातन किस्मत का कहीं ना कहीं अमल दखल जरूर होता है।
1: लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि किस्मत तो इन्होंने इनकी किस्मत का ने तो इनका साथ दिया, पर मुझे लगता है कि मैं हर बार यही कहता हूँ, हर मेरा शो ही तीसरा है, पर आप उस्मान कहते होंगे ड्राइवर हजरात को कि ड्राइव सेफ,
0: बिल्कुल,
1: और आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये ड्राइव सेफ कह दिया है तो ये किस के रिलेटेड चीज़ होगी या किस तरह का वाक़या ये बयान करने जा रहे हैं। ये हर ड्राइविंग का ही वाक़या है एक, और राज साहब का ही वाक़या है, और आपको सबसे पहले मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगा राज साहब, और वेलकम इन माय प्रोग्राम, और फजल 97.1 FM की तरफ से भी आपको वेलकम कहते हैं, और आप उम्मीद है कि आप हमारे रेगुलर लिसनर बनेंगे, और वाकया कुछ इस तरह के ये लिख रहे हैं।
0: मौसम सा चढ़ गया जी, ठहर जी, मौसम को सा चढ़ गया।

0: ऑलराइट जी, मौसम को पानी छानी पिलाने के बाद लौट के वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ अच्छा मौसम ऐसे मुझे घूर के देख रहे हैं, मैंने तो पानी पिया ही नहीं। खैर जी, अली जो हमारे साथ अपना वाक्य शेयर करते हैं उसमें बताते हैं कि वो एक रेसर हैं और वो बाइक पे रेस।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: अटेंशन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लेटिंग एजेंट्स, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। लौट कर आ चुके हैं वापस एक छोटी सी प्यारी सी जुनून की कोशिश देखिए उस पार। आई एम योर होस्ट उस्मान खान विद मौसम अली और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ड्राइव जोन। किस तरह हमारा वक्त गुजर रहा है मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। उम्मीद है कि आप भी वक्त की नज़ाकत को बिल्कुल नज़रअंदाज किए बैठे होंगे। खैर, अगर आप इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो बी सेफ, बी केयरफुल, बहुत एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। हम बात कर रहे थे अली की, कैलिफोर्निया से हमारा साथ देते हैं और उनकी जो स्टोरी है उसके मुताबिक उन्होंने यही बताया है कि ये सरकार जो है वो बाइक ड्राइव कर रहे थे, बल्कि ड्राइव क्या कर रहे थे, रेसिंग कर रहे थे। ऑल राइट, अली साहब ने भी कभी ऐसा किया होगा, लेकिन हम बात कर रहे थे राफे राजा के मुतालिक। और राफे माजरत, मैंने आपको अली कह दिया और उसकी अच्छी बात यह है कि आज से आपका एक नहीं दो दो नाम है, आपको अली भी कहा जाएगा और आपको राफे भी कहा जाएगा। अब आप मौसम के दोस्त हैं तो फिर हमारे भी दोस्त नहीं है, नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं है भाई। घूरियाँ क्यों डालते हो मौसम, मैं आपका दोस्त ले लूँगा यार।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोस्ती तो दोस्त तो सबके होते हैं, और हमारे हमें ये भी है कि हम जब रोड पे वॉक कर रहे होते हैं तो अगर किसी इंसान से रेगुलर हमारा वो हम वॉक करते हुए साथ चल रहे हैं या उनका टाइम और हमारा टाइम सेम हो तो सलाम दुआ हो जाती है, तो हम यही सोच लेते हैं कि हाँ ये दोस्ती है, ये भी हमारा दोस्त है। तो इसी तरह अगर आपसे वो बातचीत होगी, जब मैसेजेस पे बात होगी, वो हमारे रेगुलर लिसनर बनेंगे तो हमारे भी दोस्त और आपके भी दोस्त हैं।
0: ऑफ कोर्स डैड जी, हम दोस्तों में, खासकर हम लड़कों में ये चीज़ बड़ी होती है कि रास्ते में चलते हुए अगर हमसे कोई एक सिगरेट जलाने के लिए लाइटर भी मांग लेता ना तो वो भी हमारा दोस्त बन जाता है। एवं जलाते जलाते ही वो कह देता और भाईजन क्या हाल है, कहाँ रहते हैं। और फिर हम ये परदेश में रहने वाले जितने भी साउथ एशियन होते हैं ना, हम हमारा जो भी हम जबान होता है ना, हमें उससे वैसी दोस्ती हो जाती है, वैसी हमें उससे बड़ी मोहब्बत होती है। सो बस जितने भी हमारे हम जबान हमें सुन रहे हैं, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप फजा 97.1 FM एंड ऐप को ट्यून किए हुए हैं और आप हमारा साथ निभा रहे हैं। बात बात घूम फिर के ना बात वो बेचारे राफे की स्टोरी की तरफ जाने जाते जाते आगे पीछे हो जाती है। सो राफे बेचारे स्टिल इस चीज के इंतजार में होंगे कि मेरी स्टोरी को कब नशर किया जाएगा। अच्छा राफे, आपकी स्टोरी मुकम्मल तौर पे तो मैं बिल्कुल नहीं डिस्क्लोज करने वाला, हाँ बस इतना सा बता देते हैं कि राफे को एक वक्त पे ना एक एक, एक क्या तो होता है वो वंस अपॉन अ टाइम, इनको ना रेसिंग की बहुत ज़्यादा वो पड़ चुकी थी, शौक पड़ गया था इन्हें रेसिंग का। फिर इन्होंने अपने साथ अपने दो दोस्त बिठाए और इन्होंने सोचा कि मैं इन दोनों को भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। तो उसके बाद इन साहब ने बाइक पे उनको भी साथ बिठाया और बस फिर इन्होंने सोचा कि मैं दुनिया का वाहिद वो रेसर हूँ जिसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड करवाना है। इस चक्कर में इन्होंने स्पीड कहीं ज़्यादा कर दी और फिर और उस ठा में फिर दो बंदों की टांगे टूटी और एक टांग टूटी, दोनों की एक एक टांग टूटी और एक बंदे का फिर सर जो है वो फट ही गया। काश मैं ये कह सकता कि फटते फटते बच गया, लेकिन फट गया। सो खैर, इन शॉर्ट ये कि तीनों भाइयों को अच्छी खासी चोटें आई और उसके बाद इनकी ये तमाम तर चीज़ें जो है वो होने के बाद, ये खूबसूरत सा वाकया रूनुमा होने के बाद जाकर फिर इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें इनका कसूर नहीं, किस्मत का कसूर है। ऐसा ये किस्मत का कसूर था, इनका तो कोई कसूर नहीं था ना।
1: जी बिल्कुल, किस्मत का ही मुझे लगता है कसूर था, ये तो इनका तो शौक है और वो कहते हैं कि शौक का मूल नहीं होता। पर मुझे लगता है कि ये टीनेजर को ये चीज सोचनी चाहिए कि आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत से आपको पाला होता है और आपको इस काबिल बनाया होता है कि आप कल को उनकी जिंदगी का सहारा बने, जबकि आप अपनी जाने इस वजह से जाया कर देते हैं कि ये चंद मिनट की, 10 मिनट की या 15 मिनट की अपनी तफरी के लिए ये अपनी जाने जाया कर देते हैं। और मैंने कितने को देखा है कि अभी उनकी एज ही नहीं होती, इसी चक्कर में वो मारे जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको अपने माँ बाप का ख्याल होना चाहिए। और जब भी आप रेस लगाने लगें तो एक बार जेन जब भी दौड़ाएंगे कि मेरे घर में कोई इंतज़ार कर रहा होगा जिसको मैं बता कर आया होगा, जैसा कि अम्मी को अक्सर लोग बता के जाते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो तो ये इस तरह के काम करते नहीं हैं। सिंगल बंदों को कहूँगा कि वो लोग अम्मी को बता के जाते हैं कि अम्मी मैं फलां के साथ जा रहा हूँ, और पता लगता है कि साहब रोड पे रेस लगाने जा रहे हैं।
0: अच्छा, ये चीज़ें जो है ना मौसम होती थी कभी हमारे दौर में, अब तो खैर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं जवान होता था और जब मैं अपने मुल्क में होता था तो वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखने में आती, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मैंने बड़ी कम देखी हैं। एक तो हमारे जितने भी साउथ एशियन यंगस्टर्स हैं खास तौर पर, अब वो इन चीज़ों से बड़ा हट गए हैं, क्योंकि یہاں تو اگر تو وہ فیملی کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں تو پھر تو آف کورس یہ تھوڑی بہت چیزیں وہ کر سکتے ہیں اگر وہ بائی بون یہاں کے ہیں تو. اگر وہ میری تیری طرح اگر پردیسی ہیں دوسرے ملک سے آئے ہیں یہاں پر کام کاج کے سلسلے میں تو پھر آپ نے کبھی آپ کا دل کیا اس طرح کرنے کا یہاں پر آ کر؟
1: نہیں, یہاں پر آ کر تو اس طرح نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے آپ جس بھی ملک میں جائیں ان کے رولس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور رولز ہی ہوتے ہیں جو ڈسپلن ہی ہوتا ہے جو زندگی کو گزار, جو بندہ زندگی میں ڈسپلن لے آتا ہے یا ڈسپلن کو اپنا لیتا ہے تو وہ بندہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور یہ ایک پریکٹیکلی اپرووڈ چیز ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن لے آئیں اور رولز کو فالو کرنے لگ پڑیں تو آپ کوئی بھی کام کریں چاہے وہ اللیگل تو نہیں کہہ سکتا,
0: ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا جی.
1: یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں, بڑی میری قسمت ساتھ نہیں دیتی اور پتہ لگے کہ کرتے کیا ہیں جی اور وہ کچھ اللیگل کام میں انوالو ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں قسمت میں بہت لکھا نہیں ہوا پر میں محنت بہت کرتا ہوں کہ یہ کام میرے ساتھ ہو.
0: اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے, خیر کوئی بھی بات ہے جی, ہم ہر چیز کو پرکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور اب جب تک ہم اس چیز کو پرکھ نہیں لیتے تب تک ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. خیر باتیں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی. پروگرام میں ہمارے پاس اور گانے بھی موجود ہیں جن کو ہم نے شامل کرنا ہے. فیاض ہمیں سن رہے ہیں, ہمارے بڑے پیارے سے کولیگ ہیں اور وہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ موزن صاحب آپ کی, خاص طور پہ وہ تعریف کر رہے ہیں. مجھے لگتا
1: بہت شکریہ فیاض صاحب. مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی ہم اس ٹائم پہ ریگولر لسنر ہیں اور ویلکم ان ڈرائیو زون.
0: اچھا یہ ہمیں میرا خیال ہے مانیٹر کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں. ویسا بہت شکریہ آپ کا, آپ کی فرمائش تھی ہمارے پاس ایک خوبصورت سے ٹریک کی, تو لیجئے آپ ہی کی فرمائش پہ آپ کے لیے یہ خوبصورت سی آواز شامل کر رہے ہیں. باقی ملاقات کرتے ہیں اس ٹریک کے اس پار, رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ. مجھے کہتے ہیں عثمان خان
1: اور مجھے کہتے ہیں آر جی موزم
0: اور آپ سن رہے ہیں جی فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب, پروگرام ڈرائیو زون.

0: जी हाँ जनाब, आ चुके हैं लुट के वापिस तेरा प्यार प्यार प्यार हुक्का बार। और इस हुक्का बार में मैं और आप, नहीं हुक्का बार मेरी प्रोग्राम में मैं और आप साथ साथ हैं। और इसमें हम आप सिर्फ दो, आप और मैं नहीं है बल्कि हमारे साथ साथ मौसम भी हैं। और मौसम चुप्पी कर गया सोनिया?
1: नहीं, चुप तो नहीं गया। मैं आपको सुन रहा हूँ और मैं आपके लिए भी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। लिसनर को तो हम क्वेश्चन करते रहते हैं, कभी किसी ने एक आरजे को नहीं क्वेश्चन किया।
0: मतलब अब आपका दिल है कि उस्मान साहब को फंसाया जाए? हाँ मैं पर फंसाने से पहले एक दो तीन गिन लेना था कि मैं भागने में मुझे आसानी है, मुझे पता हो तीन पर भागना है।
1: अब भागने वाली बात ही नहीं रही, अब तो लिसनर को भी पता लग गया और लिसनर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। और लिसनर भी ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सवाल है जो मौजूम करने वाला है और उस्मान से करने वाला है।
0: चलें जी मौजूम साहब, मैं एप्पल, वो क्या कहते हैं, रेडी स्टेडी एप्पल गो हूँ। आप बिल्कुल मुझसे सवाल कर सकते हैं। लोगों को थोड़ी पता है स्क्रिप्टेड है। अच्छा, लोगों को पता है कि ये स्क्रिप्टेड है और ये बातें जो मैं आप और मैं कर रहे हैं ये सारी स्क्रिप्टेड होती है। नाल नाल बैठे कैसे हो सकता है कि अचानक से ये सारी चीजें हो? अच्छा, वो सब एकदम परेशान हो गए।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे मेरे जहन में था कि मैं अक्सर दोस्तों से भी करता हूँ और किसी ने मुझसे किया था तो मैंने भी वो जहन में रखा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किसी ने आपको फंसाया और आपने सोचा कि उन्हें किसी अगले ने फंसाइए।
1: जैसे कि अक्सर इंटरव्यूज की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे भी रेंडमली भी पूछा जाता है कि आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। इसमें आपने किस्मत का भी बताना है और मेहनत क्या कर रहे हैं इसके लिए वो भी बतानी है।
0: वेरी गुड हो गया, यानी कि आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगले 5 साल तक मैं खुद को कहाँ देखता हूँ।
1: व्हाट अबाउट फ्यूचर?
0: आप मेरा फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसका मुझे खुद भी नहीं पता। देखिए मौसम, ये बात सच है कि अगर हम इसको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें ना, काइंड ऑफ अगर हम इसको लेकर जाते हैं थोड़ा सा वो मजहबी टाइप पे अगर हम इसको लेकर जाते हैं, तो ऑफकोर्स डैट हर बंदे को पता है कि उसे अपनी अगली सांस का भी नहीं पता, ऑफकोर्स कि उसकी अगली सांस भी उसमें आनी है नहीं। हाँ, लेकिन ये एक इस बात को जवाब बना के हम इस सवाल से हट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। अब आपने जिस एंगल से सवाल पूछा है मुझे उसी एंगल से जवाब देना पड़ेगा। मैं ऑफकोर्स डैट अगर मैं मेहनत करता रहता हूँ तो आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ शायद आज से 5 साल के बाद मैं इससे 5 गुना ज्यादा बड़ी पोस्ट पर जा सकता हूँ। और गल है कि इस तो वड्डी को पोस्ट होंगी उसी होती होंगी। और अगर हमारे सीईओ साहब इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो अगले 5 साल के बाद मैंने आपकी जगह पे आना है। आपके पास अगर उससे अगली कोई जगह है तो भाई जान आप वहां पे शिफ्ट हो जाना और मुझे ये वाली पोस्ट दे देना।
1: जी, जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं और इसी तरह आपका जवाब भी मुस्कुराता हुआ आया है।
0: इरादे मेरे नेक नहीं लग रहे हैं ना,
1: पर ये बात तो है। मैं ये तो नहीं करूंगा इरादे नेक नहीं लग रहे, पर मुझे लगता है कि आप छुपाना चाह रहे हैं कुछ। तो
0: देखिए जी, ये हम एशियंस, साउथ एशियंस का ना ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ना मेहनत से पहले बताते नहीं है। ये सच है मौसम, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सियाने लोग कहा करते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। तो बस ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में आप देख लीजिएगा हम कहाँ पे होते हैं, तख्ते पे होते हैं या तख्त पे होते हैं, ये फैसला तो आप किस्मत ही कर सकती है।
1: अच्छा उस्मान, मेरे जहन में ये बार बार बात आ रही है कि क्या नाकामी भी बुरी चीज़ है या नाकामी अच्छी चीज़ होती है? जिस तरह के कोई भी जाहिर सी बात है, अगर बंदा मेहनत करता है तो समटाइम हर वक्त किस्मत साथ नहीं देती, ठीक है? कुछ चीज़ें तकदीर में भी लिखी होती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि तकदीर में भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। तकदीर वो है जो आप चेंज नहीं कर सकते, किस्मत को आप अपनी मेहनत से चेंज कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि क्या नाकामी भी बुरी चीज़ है या नाकामी से इंसान,
0: देखिए मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, हर उस इंसान के लिए जो नखट्टू है, वेला है, निकम्मा है, उसके लिए नाकामी बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जो एक वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, समझदार, मेच्योर पर्सन है, उसके लिए नाकामी कभी भी बुरी चीज़ नहीं होती। आपकी नाकामी जो है ना, वो आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। हाँ, ये और बात है कि बहुत से लोग हौसला छोड़ जाते हैं उस नाकामी की वजह से और वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर आप इसे सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपकी नाकामी ही आपकी कामयाबी की वजह बनती है। कभी भी कोई पहली अटेम्प्ट में मुझे नहीं लगता कि कामयाब होता है। अगर वो पहली अटेम्प्ट में कामयाब हो गया तो उसकी मेहनत के साथ बहुत हद तक उसकी किस्मत का साथ भी होता है। और अगर आपकी किस्मत का साथ नहीं है तो फिर आपकी नाकामी जो है वो आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजान 97.1 FM पर।
2: इट्स कमर्शियल टाइम।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है ना दालें।

0: प्रोग्राम का बेशतर हिस्सा जो है वो गुजर चुका है, जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें जो आपके और हमारे साथ की जो बीच वाले रास्ता है जिसको हम मैसेजेस कहते हैं उसको आप तक उनको आप तक बल्कि पहुंचाएंगे। इससे पहले कमर्शियल पे जाने से पहले हमने मौज़ूम की फरमाइश पर उनके दोस्त रेहान के लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक शामिल किया था और ये आपको गेस करने का कहा था कि इस गाने को सुनने के बाद क्या बंदे के जहन में आता है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे उनको हम समझा देते हैं कि ये जो मौज़ूम साहब के सेकंड दोस्त जिनका नाम रेहान है, रेहान साहब किसी भली जवानी के दौर में इश्क मोहब्बत में मुब्तला हुए और फिर इश्क मोहब्बत में इन्होंने दर दर की खाक छानी। और
1: वैसे ये बात सुनते हुए मुझे भी कुछ एक अजीब सा लगा, पर मुझे लगता है कि ये हर घर की स्टोरी है और हर घर की स्टोरी में भी ये भी हमारी टॉपिक से भी रिलेट करती है।
0: अबे तो हम सिर्फ रेहान की बात नहीं कर रहे, हम जनरली बात कर रहे हैं जो इस वाकये में पेश चीज़ें होती हैं उसके मतलब। लेकिन चूंकि हमारे पास इस वक्त हमारे सामने एग्जाम्पल फ़िलहाल एक ही है और वो रेहान साहब की है, तो ये सिर्फ रेहान साहब पर नहीं सब पर है, लेकिन रेहान साहब आपके लिए ज़्यादा है। So, हुआ कुछ यूं जी कि रेहान साहब एक अपनी जवानी के दौर में मर्ज़े मोहब्बत में मुब्तला हुए और जब ये मर्ज़े मोहब्बत में मुब्तला हुए तो उन्होंने कोई ज़माना नहीं देखा, इन्होंने कोई फैमिली नहीं देखी, इन्होंने पैसा नहीं देखा, जायदाद नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा क्योंकि था ही नहीं कुछ। तो ये एक सनफ नाजुक के इश्क में मुब्तला हुए और उन्हें दर दर की खाक जानी और इन द एंड वही हुआ जो मजनू के साथ हुआ था, वही जो फरहाद के साथ हुआ, वही जो पुन्नू के साथ हुआ और वही जो सलीम के साथ हुआ। नाउ ना लबी थे नहीं ना लबी। लेकिन ये बंदा इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं हुआ, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने कहा कि अगर ऐसा तो फिर ऐसा ही सही, इन्होंने वेरी नेक्स्ट डे किसी और से शादी कर किसी और से शादी कर ली। हम ना रांझा है ना फरहाद के कुछ लगते हैं। हम पर आएगी तो हम करके दिखाएंगे। सो बिल्कुल सेम एज इट इज इन्होंने यही किया और इन्होंने वेरी नेक्स्ट डे उनको वो करके दिखाया कि देखो अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे इश्क में पागल नहीं हुआ, अब बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया है। अब इससे इनका कहने का मकसद तो ये था कि इनकी किस्मत में शायद ऐसा था जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के साथ साथ आपकी थोड़ी सी मेहनत का भी अमल दखल है। देखिए ये बात हकीकत है, मजाक से तंज व मजाक से हट के ये बात कह रहा हूँ कि एक बड़ी सेंसिटिव बात है, लेकिन यह हकीकत है कि मौज़ूम आप मैं बहनों बेटियों वाले हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक निखट्टा निकल्लू बंदा आए और वो हमसे आके हमारी बहन बेटी का हाथ मांगे तो हम उसे दे देंगे, कभी भी नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि हमारी फैमिली के लिए, हमारी बहन बेटी के लिए जो भी रिश्ता आता है वो एक सक्सेसफुल पर्सन हो, वो एक कामयाब शख्स हो, और अगर वो कामयाब नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं। तो बस रेहान के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ होगा। खैर रेहान, मैंने आपकी बात आपकी स्टोरी को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बयान किया है, वो इसलिए कि आप मेरी किसी बात को लेके नाला ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए इसलिए, और ये सब कुछ जो है ये मौज़ूम के कहने पे मैंने किया है, वरना मौज़ूम तो मुझे कह रहे थे साफ साफ बताएं, सीधा सीधा बल्कि एड्रेस भी बताएं। एना दी तो लड़ाई करावा मैं जरा।
1: नहीं प्यारे दोस्तों में लड़ाई नहीं हुआ करती और प्यारे दोस्त जो है वो एक
0: बस एक दूसरे का सारी फाड़ते हैं और कुछ नहीं करते। लीजिए रेहान, मैंने आपको हिंट दे दिया है। जी मौज़ूम आप कुछ कह रहे थे।
1: नहीं मैं कुछ कह रहा था कि दोस्तों में ऐसा होता है, झगड़े वगैरह होते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ होते हैं और मुझे लगता है कि रेहान भी वन ऑफ देम, और मैं आपको वेलकम कहता हूँ। है तो ये अजीब है कि बाद में वेलकम कह रहा हूँ।
0: इतना रगड़ने के बाद वेलकम।
1: थोड़ा सा आपका मूड चेंज करना
0: है। मनी रेहान ना मनी।
1: अब क्या करूं, ये भी देखना है ना कि सड़ना बिल्कुल ही सड़ना फाड़ दे।
0: ओके जी रेहान, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, सर वर्णी फाड़ना बुरी बात होती है, आपने जब भी इतनी ज़ोर से डालनी है कि कड़ाके कट देने ने। बाकी दोस्तों में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और हमने आपका बिल्कुल भी एड्रेस नहीं बताया, दुनिया में हज़ारों रेहान होंगे तो हम वो गली के नुक्कड़ वाले रेहान की बात कर रहे थे।
1: हम आपकी बात ही नहीं कर रहे थे।
0: ऑफकोर्स डैट, बहुत शुक्रिया जी रेहान, आपने हमारा प्रोग्राम सुना और आप फजा नाइट 7.1 FM की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक और दोस्त हैं मौजम के जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आयमा बेग और सहर अली बग्घा की खूबसूरत सी आवाज़, सभी खूबसूरत सी समातों की नजर। उम्मीद है कि आपको ये आवाज़ जरूर अच्छी लगेगी। मिलते हैं इस आवाज़ के उस पार।

0: जी हाँ जी, बेबी डोल सोने की है मेरे साथ वाला बंदा, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वंस अगेन वेलकम बैक जी, बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत से ट्रैक के उस पार लौट कर आ चुके हैं वापस से सुमित के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं। मौजम अली उस्मान खान आपके साथ। मौजम, अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं, और कोई मैसेज रह गया किसी का पढ़ने वाला तो पढ़ लीजिए, कुछ बातें खूबसूरत सी करने वाली रह गई हैं तो कह लीजिए, क्योंकि मेरे को तो एक बड़ी सोनी गाली हूँ मैं आगे जाके कराँगा। ये मैं पढ़ूंगा, ये आप नहीं पढ़ेंगे, ये मैं
1: पढ़ूंगा, ऐसा तो ना करें।
0: ना जी ना, ये समवन स्पेशल का मैसेज है और आपकी तरफ से मैं इसको पढ़ूंगा, मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा, मैं गाना ला दूंगा। ओके जी, बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में, उम्मीद है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। प्रोग्राम में हल्की पुल्की चिट चैट भी चलती रही, इन्फॉर्मेशन थे ऐसी देती है बहुत सारी दी है जी, किस्मत और मेहनत के मुताबिक हमने आपको जितने लेक्चर्स दिए हैं किसी एक पर भी अमल बेशक मत करिएगा, साडा की जाना तुसी करने, तुहाडी किस्मत अच्छी होएगी, तुहाडा फ्यूचर बनेगा, नहीं करोगे तो साडा की जाएगा, असि इत्थे फक्की वेचन थोड़ी बैठे हैं। ऐसी बातें आपने बिल्कुल नहीं सोचनी, क्योंकि हम ऐसी बातें कर नहीं सकते। इस वक्त तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा जी, मकसद यही होता है हर प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें करने का, कि अगर किसी एक शख्स ने भी हमारी एक बात पर भी अमल कर लिया और उसकी ज़िंदगी सवर गई तो ताउम्र हमें भी उसका सवाब मिलता रहेगा। बस इसी बात के साथ मौजूद में चाहूँगा जाने वालों से कोई ख़ास बात अगर आप करना चाहें तो कीजिए, फिर उसके बाद इजाज़त लेते हैं।
1: खैर जी, मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें दो घंटे सुना और हमारे साथ साथ रहे और हमें अपने होने का एहसास दिलाया, और मैं वेरी थैंकफुल हूँ उन पर्सन का जो जिन्होंने स्पेशली मुझे मैसेज करके ये कहा कि आप हमारा नाम ज़रूर शामिल करें। और बस ये ध्यान कीजिएगा कि अब जो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो मैं ही करूँ तो बेहतर है।
0: ना सुनिया ना। ओके जी, आप जरूर करें, मैं मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था बस आपको, जरूर आखिरी मैसेज शामिल करें और उसके बाद फिर इजाजत चाहते हैं।
1: सबसे पहले तो फॉर माई स्पेशल वन पर्सन, मैं उनको कहना चाहूँगा कि कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मुहताज नहीं होते, सिर्फ एहसास काफ़ी होता है। और एहसास ही है जो कि हर इंसान की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है जी।
1: खैर जी, आपके नाम एक स्पेशल सा सॉन्ग, और इस सॉन्ग के बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या किसी को कोई ऐसी चीज़ जिससे दिल दुखा हो तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, और माजरत ही करना पड़ता है कि क्योंकि

0: हर जी माजरत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो और सुनते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते और सुनते हैं क्योंकि वक्त की घड़ी बिल्कुल करीब तरीन है और मुझे लगता है कि हमारी ड्राइव जोन जो है, हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल अपनी मंजिल को पहुंचने वाली है, तो सुनते हैं गाना और इंजॉय करते हैं इसको।
1: जी बिल्कुल जनाब, इंजॉय अब आप लोग ही करेंगे, हम लोग तो इंजॉय नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तरफ से अब इजाज़त चाहने का वक्त आन पहुंचा है और मौज़म साहब आपने जो बातें कर दी हैं अब आप पर ये बातें घर जाके भारी पड़ेंगी। और आपके समन स्पेशल के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक हमने शामिल किया है और उम्मीद है कि उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बढ़ रहा है और बाखुदा वहाँ पर प्यार दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। ज़िंदगी और सांसों वफा की तो आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पर दोबारा होगी मुलाकात। अपने मेज़बान उस्मान खान और मौज़म अली को दीजिए इजाज़त इस बात के साथ के, इस वादे के साथ के दुआओं में याद रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका और हमारा सबका अल्लाह निगेबान।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है।

0: बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
0: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
2: Get ready to move.
3: It's all about the beats. Wow,
4: FM. Only tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.
4: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंगम या अभी रابطہ करें 0759315066969। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 एफ

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.8।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
9: hayatweddings.co.uk।
10: You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour, Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: This is 97.1 Fuzzer FM.